0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। आदाब, कैसे हैं आप? और कई बार जब कोई भी रिलेशनशिप खत्म हो रही होती है ना, कोई दोस्ती खत्म हो रही होती है, प्यार खत्म हो रहा होता है, कुछ ऐसा खत्म जब हो रहा होता है, तब इंसान का ना बड़ा अजीब सा एक चेहरा देखने को मिलता है, बड़ा पत्थरनुमा, बड़ा हार्ड सा एक चेहरा देखने को मिलता है। शायर लखनवी साहब का एक शेर पढ़ा मैंने और वो सारे चेहरे अचानक से सामने आ गए। कहते हैं कि कितने दिल थे जो हो गए पत्थर, कितने दिल थे जो हो गए पत्थर, कितने पत्थर थे जो सनम ठहरे। आए हाय हाय हाय हाय, क्या बात है। और सच बात है, मोहब्बत से गुजरने के बाद कई दिल पत्थर बन जाते हैं जब वो मोहब्बत पूरी नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल से असली जादू तो है दिल को दिल बनाए रखने का,

बावजूद इसके कि मोहब्बत पूरी ना हो। कितने दिल थे जो हो गए पत्थर, कितने पत्थर थे जो सनम ठहरे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे

0: दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: बीप।
2: अरे बोल कौन रहा है?
3: अरे बोल कौन रहा है?
0: सर ये वाला भेजने। बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
0: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेजने सर। बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
0: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजने सर, ये वाला। बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: अरे बावले हो गए हो क्या?
0: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे। बीप।
2: अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ।
0: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो, भेज के तो देखो, ये वाला भेज दूं लास्ट।
2: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
0: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए। बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
0: सर ये वाला ठीक है। बीप।
2: अबे पागल, ले ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
0: ये वाला पक्का है सर, ये वाला, दिस वन सर। बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
0: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो। बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
0: सेंट। सर ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
0: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल मॉडल, ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
11: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
10: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
12: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
14: Radio Mirchi, it's hot. 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट,
1: और इन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था।
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू,
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल फिर से, और वक्त है आपको रूबरू कराने का हमारी आज की शायरा मीना कुमारी जी से। बिल्कुल, आई एम श्योर आप सब मीना कुमारी जी को जानते होंगे। भारत की एक मशहूर हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री थीं और साथ ही साथ एक शायरा भी थीं। इन्हें खासकर जो दुखांत फिल्में होती हैं उनसे याद किया जाता है। उनकी जो भूमिकाएं रहती थीं ऐसी पिक्चर्स में बड़ी खूबसूरत रहती थीं, और उन्हीं का एक शेर आज आपको नज़र करने जा रहा हूँ मैं। कहती हैं कि आगाज़ तो होता है अंजाम नहीं होता, आगाज तो होता है शुरुआत तो होती है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब हाय, मील खत्म करने के लिए जैसे डेजर्ट जरूरी है वैसे ही उसका नाम जरूरी है, वरना कहानी अभी चल रही है, वरना कहानी अभी बाकी है। आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। मीना कुमारी नाज, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और आजकल ना जेंजी की जबान में सिचुएशनशिप नाम का एक लफ्ज आया है। और एक्चुअली सिचुएशनशिप के बाद अभी मैं हाल में पढ़ रहा था मेबी रिलेशनशिप, मतलब कोई ऐसी रिलेशनशिप जो मेबी पे है अभी, केवल मेबी रिलेशनशिप कहने लगे हैं वो लोग इसे। इससे ना मुझे उमर अंसारी साहब का एक शेर याद आता है, क्योंकि ये लव्स हो सकता है नया आया हो, लेकिन ये भावनाएं तो हमेशा से ही एग्जिस्ट कर रही है ना। उमर अंसारी साहब लिखते हैं कि मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन, मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन मुसाफिरों की मोहब्बत का एतबार ना कर। क्या बात है, सच्ची बात है दोस्त। यही बात है कि मुसाफिर जो होते हैं उनका तो काम ही यही है ना, गुजर जाना। अब किसी गुजरने वाले शख्स से, किसी गुजरने वाले इंसान से दिल लगाओगे तो टूटेगा तो है ही। मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन मुसाफिरों की मोहब्बत का एतबार न कर। स्टेडियो इंटू मिर्ची महफिल। और आपका भी ऐसा कोई किस्सा है क्या, जब आपको किसी मुसाफिर से मोहब्बत हो गई थी, या फिर आप ही वो मुसाफिर थे? अगर हाँ तो बताइए मेरे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आपको आज का ताशी अनप्लग्ड और ये जो गजल है गुलजार साहब ने लिखी है जगजीत जी ने इसको अपनी आवाज दी है और मेरे ख्याल से वन ऑफ दोज गजल्स है मेरे जहन में जगजीत सिंह जी की जिसने अपनी ऐसी छाप छोड़ी क्योंकि बहुत बचपन में सुनी थी मैंने लेकिन रह गई यार रह गई दिल के अंदर. दिस इज कॉल्ड शाम से आंख में नमी सी है.

पसंद आई हो और आपकी भी कोई फरमाइश हो तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची TASHI ऑन मिर्ची पर. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल. आपका ताशी है आपके साथ. इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है बता?
1: कोहली।
2: तू भी
3: आस। इधर
2: हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
1: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
1: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट। सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और इमेजिनेशन तसव्वुर एक ऐसी जमीन है ना जो कि बहुत उपजाऊ है, उसमें जो असलियत में ना भी हो वो भी आप पैदा कर सकते हैं, उसके साथ भी आप जी सकते हैं। इमेजिनेशन में तो कुछ भी पॉसिबल है। तरकश प्रदीप साहब का एक शेर है, आपको नजर कर रहा हूं। कहते हैं कि बनाता हूं मैं तसव्वुर में उसका चेहरा मगर, तसव्वुर मतलब इमेजिनेशन, बनाता हूं मैं तसव्वुर में उसका चेहरा मगर हर एक बार नई कायनात बनती है। कई बार लोगों के साथ जिनके साथ हम इश्क में होते हैं, प्यार करते हैं, पूरी दुनिया होती है जो उनके साथ हम इमेजिन करते हैं, और जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। बनाता हूं मैं तसव्वुर में उसका चेहरा मगर हर एक बार नई कायनात बनती है। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर। किस्सा कॉर्नर
1: कि आप कताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपकी नजर। कुछ बातें होती है ना जिनको भूल नहीं पाते आप, उनको बस आप पीछे वाले बर्नर पे रख देते हैं। गैस होती है ना जिसमें खाना पकता है, तो चार चूल्हे होते हैं जिनमें वाली जो गैस होती है उसमें आगे वाले दो चूल्हे हाई फ्लेम वाले होते हैं, पीछे वाले दो चूल्हे लो फ्लेम वाले होते हैं। तो आप दुख को ना ज्यादा से ज्यादा बस पीछे वाले दो चूल्हों पे रख सकते हो, लेकिन गैस से हटा नहीं सकते। कुछ दुख ऐसे होते हैं। फिराक गोरखपुरी साहब का एक बड़ा अप्रोप्रिएट बड़ा सटीक शेर है यहाँ पे, कहते हैं कि ए भूल न सकने वाले तुझको, ए भूल न सकने वाले तुझको, भूले न रहे तो क्या करें हम। और क्या यार, हर समय सोचते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे, और भूल तो बिल्कुल तो भूल नहीं सकते, है ना। कितनी ऐसी यादें होती हैं जिनको हम

बैक बर्नर पे रखते हैं। ऐ भूल न सकने वाले तुझको, भूले न रहे तो क्या करें हम। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। और अगर ऐसी कोई याद है आपकी भी जो भुलाए नहीं भूलती, या फिर जिसको बैक बर्नर पे रख के बैठे हो सकता है शेयर करने में दिल हल्का हो जाए। ताशी ऑन मिर्ची मेरा इंस्टाग्राम है, आ जाना वहां बात करते हैं। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: लिस्नर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
2: Radio Mirchi, it's hot. ninety two point seven
3: FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
2: 92.7 FM
3: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

लता किसी तारीफ के नहीं बल्कि परस्तिश के काबिल हैं। उनकी आवाज़ सुनने के बाद कुछ ऐसा आलमतारी हो जाता है जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। यूं समझिए जैसे कोई दरगाह या मंदिर में जाए तो वहाँ पहुँचकर इबादत के लिए खुद ब खुद सर झुक जाता है और आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल।
1: कि आपका ताशी आपको मुखातिब कराए हमारे आज के लव्स कफस से। कफस का मतलब होता है, मानी होता है पिंजरा, कारागार, जाल, फंदा, है ना। और कफस का एक बड़ा ही बेहतरीन इस्तेमाल है राज इलाहाबादी साहब की गजल में। उसका एक शेर सुनाऊंगा मैं आपको, जिसमें कफस मानी जाल, फंदा, पिंजरा, इसका बड़ा सटीक इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि आशियां जल गया, गुलिस्तां लुट गया, हम कफस से निकल कर किधर जाएंगे। आशियां जल गया, गुलिस्तां लुट गया, हम कफस से निकल कर किधर जाएंगे। इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। क्या बात है, जब कहीं जाने के लिए जगह ही ना बची हो तो जेल से निकल के कोई इंसान कहां जाए। जेल से निकल के तो उसकी पूरी रियलिटी खत्म हो जाएगी ना। आशियां जल गया, गुलिस्तां लुट गया, हम कफस से निकलकर किधर जाएंगे। इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। प्यार भी ऐसी कैद होता है। आप अपनी सारी रिलेशनशिप्स बाहरी सब खत्म कर देते हैं, दोस्तों से रिश्ते नाते खत्म कर देते हैं, प्यार में डूब जाते हैं, और फिर प्यार से बाहर आते हैं तो कफस से निकल कर किधर जाएंगे। स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। और अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी हो तो बिल्कुल शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची पर। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और कुछ कुछ लोगों को ना दूर से देख के ऐसा लगता है कि यार इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास तो जितना गिना जा सकता है उसके भी पार है, इतना सब कुछ है, इनके अंदर क्या कमी होगी। लेकिन निदा फाजली साहब ने इतनी खूबसूरती से यह जता दिया है कि दोस्त जिस चीज की कमी होती है ना उस इंसान को ही पता होता है जिसको वो कमी है। कहते हैं कि सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है निगाहें, सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। वाह जी वाह, कितना खूबसूरत शेर है। और सच्ची बात है कि जिसके अंदर जिस चीज की कमी होती है ना वो चीज उसको पता होती है, उसको खबर होती है, और सामने वाले को हमेशा ग्रास ग्रीनरी दिखती है दूसरी तरफ। लेकिन अगर वो उस शख्स के जूतों में कदम रखे तब उसको समझ आए कि मामला क्या है। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
5: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: 92.7 FM,
5: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और एक बुरी आदत है मेरी, और बुरी क्या, सही भी कह सकते हैं, कुछ लोग के नजरिए से सही भी होगी, कुछ लोग के नजरिए से बुरी भी होगी। आदत है बहरहाल कि जहां सब जा रहे होते हैं ना, उस जगह को मेरा दिमाग पता नहीं क्यों एकदम हटा ही देता है, जाता ही नहीं है वहां। जब पता था कि सब इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं तब वो नहीं किया है ना, जानबूझ के नहीं किया, बायो लेके नहीं किया है ना, तो वही बात है। और मुझे ना शकीब जलाली साहब का एक बड़ा ही सटीक शेर मिला इस पे। कहते हैं कि शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, तारुफ माने इंट्रोडक्शन, शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। वाह जी वाह, बड़ा ही प्यारा शेर लगता है मुझे, और मेरी पर्सनालिटी को तो भाई सच में पूरे तरीके से डिस्क्राइब करता है। शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। आप भी ऐसे ही हैं क्या, थोड़े थोड़े से, कि उस रास्ते से बच के चलते हैं जो आम हो जाए? और ऐसा कौन सा रास्ता है जो आपने छोड़ा क्योंकि वो आम हो गया था, बताइए मुझे मेरे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची पर। आपका ताशी आपके साथ, ऑफ कोर्स मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: का कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, एंड जस्ट लाइक दैट वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी था आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर मी टू गो। लेकिन जाने से पहले आपको पता ही है, ताशी अनप्लग्ड पेश करना तो मेरा बनता ही है। और ये जो गजल है, गुलजार साहब ने इसे लिखा, जगजीत जी ने अपनी आवाज दी। इट्स कॉल्ड शाम से आंख में नमी सी है।

से नमी सी है और अब तो रात आ गई है। अगर आपकी भी ऐसी कोई फरमाइश हो तो आप लिख भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची पर। आपका ताशी था आपके साथ मिर्ची महफिल पर। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

फ्राइडे नाइट यानी बड़ी सारी हिंदी मूवीज रिलीज होती हैं आज। कई बार तो ऐसा होता है बेबी कि मूवी हॉल्स में ना फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही, लेकिन ओटीटी पे थर्सडे नाइट या फ्राइडे नाइट को रिलीज होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब एवरी फ्राइडे बड़े हॉल्स पे कोई ना कोई बड़े स्टार की फिल्में रिलीज होती थी। फ्राइडे के लिए हमेशा हमारे जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ना काफी नर्वस रहते थे कि उनकी फिल्में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ऐसे में ना बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ना कुछ कुछ सुपरस्टिशंस फॉलो करते थे, नॉट जस्ट फॉर फ्राइडेज बट ऐसे भी अपनी लाइफ

में। अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे स्टार के बारे में जिन्होंने नॉनवेज और लिकर दोनों को छोड़ दिया था बिफोर द रिलीज ऑफ हिज बिग बजट फिल्म। कौन थे वो फिनोमिनल डायरेक्टर एंड एक्टर, अभी बताएगी आपको श्रेया। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मेरा नाम जोकर ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी राज कपूर साहब को। ये उनके दिल के सबसे करीब फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पे दर्शकों के करीब नहीं पहुंच पाई। दिस वाज अ सुपर फ्लॉप फिल्म और इस फिल्म में बहुत सारा पैसा लगा था राज कपूर साहब का। इनफैक्ट वो एकदम बैंकक्रप्ट हो गए थे जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी। उसके बाद उन्होंने जिस फिल्म के लिए अगला काम शुरू किया ना, उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया था उस फिल्म के रिलीज तक। वो क्या सैक्रिफाइस था, कौन सी फिल्म थी, आई विल लेट यू नो कुछ गानों के उस पार। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ।

मूवी का नाम बॉबी, और ये एक ऐसी फिल्म होने वाली थी जिससे शायद राज कपूर साहब अपनी सारी बैंक्रप्सी को रिकवर कर पाते, अपने डेट्स को रीपे कर पाते। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ ऑफ आर हिंदी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लेजेंडरी स्टार्स। सो जब राज कपूर साहब की बहुत सारा पैसा लगने के बाद, इनफैक्ट उनका सारा पैसा लगने के बाद, मेरा नाम जोकर सुपर डुपर फ्लॉप हो गई ना, तो उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिर से कर्जा लिया था बहुत सारे नोन और अननोन रिसोर्सेज से। उनकी ये इकलौती उम्मीद थी अगर उनकी ये फिल्म चल गई तो वो अपने सारे कर्जे को वापस रीपे कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने पता है एक सैक्रिफाइस किया था, एक नहीं बल्कि दो सैक्रिफाइसेस किए थे। उन्होंने नॉनवेज को और लिकर को, ड्रिंक्स को, तब तक हाथ नहीं लगाया था जब तक बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन की रिलीज पे ही बॉबी को सुपर हिट नहीं कह दिया गया। एंड आफ्टर दैट ही पार्टीड। तो इसी बात पे बॉबी का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है पता?
1: कोहली।
2: तू भी
3: आस। दोनों
2: इधर। हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
4: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
5: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें और आज उस जमाने के सुपरस्टिशंस भी चल रहे हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड मैं कुछ बॉलीवुड स्टार्स के ना सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, कुछ टोटको की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी चीजों की बात कर रही हूँ जिसपे वो बिलीव करते हैं। अब अगर हम द सुपर स्टार बच्चन साहब को लें तो ये सबको पता चल गया है ना अब तो कि अमिताभ बच्चन इंडिया का कोई भी क्रिकेट मैच लाइव नहीं देखते। उनको ये लगता है कि जब जब वो लाइव देखते हैं ना इंडिया हार जाती है, और अगर कहीं बैटिंग कर रही होती है तो बहुत जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं ना वो सबको रिकॉर्डिंग मोड पे लगा करके छोड़ देते हैं एंड आफ्टर द मैच ही वॉचेस देम। लेकिन ये वाला सुपरस्टिशन उनका सबको पता है, एक जो सिर्फ मुझे पता है मैं अभी आपको बताऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया बैक टू बैक चल रही हैं। आज मैं सुपरस्टिशंस ऑफ हमारे लेजेंडरी बॉलीवुड स्टार्स की बात कर रही हूँ। बच्चन साहब का क्रिकेट को लेकर के क्या सुपरस्टिशन है ये तो सबको पता है कि वो कोई भी इंडिया का मैच जो है ना क्रिकेट का, वो लाइव नहीं देखते, वो हमेशा रिकॉर्डिंग मोड पे डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं, बिकॉज ही फील्स कि अगर वो लाइव विटनेस करेंगे तो इंडिया हार जाती है। एनीवे, दूसरा सुपरस्टिशन जो उन्होंने बातों ही बातों में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पंक्चुअल बहुत है अपनी मूवी की शूटिंग को लेकर के, किसी भी सेट पे पहुंचने को लेकर के। ही सेड कि मैं इतना ज्यादा पंक्चुअल हूँ कि अगर मैं कभी लेट हो जाता हूँ, खुदा ना खास्ता, जो वो कभी नहीं होते हैं, तो उनके दिल में एक खटास सी हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस सेट पे लेट क्यों पहुंचा। क्या आज का दिन उनके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा? इमेजिन, उनका ना समय पे कंट्रोल है जो किसी का नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई ही इज दी बच्चन। इसी बात पे बच्चन साहब का एक गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: गली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन?
2: नो।
1: गोल्डी? सोल्डी?
2: नो। एंटोनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जीतू जी आज भी प्लेन में चढ़ने से डरते हैं और इसीलिए वो थोड़ी पूजा पाठ करके ही किसी भी प्लेन को बोर्ड करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ द जंपिंग जैक उनको कहा जाता था बिकॉज ही डांस सो वेल। सो जितेंद्र जी का ये सुपरस्टिशन है कि कोई भी फ्लाइट वो बोर्ड कर ले उनको थोड़ी सी पूजा करनी होती है। एंड ही सेज कि उनको फ्लाइट फोबिया है क्योंकि इनिशियल डेज में उन्होंने जब जब फ्लाइट ली तो उसमें टर्बुलेंस रहा, फ्लाइट थोड़ा डगमगाई, ऑल ऑफ इट, उससे उनके दिल में डर घर कर गया और इसीलिए वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले ऊपर वाले को बहुत अच्छे से याद करते हैं और उन्हें बटर लगाते हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, जीतू जी की बात हुई है, उनका गाना ना हो ये गुस्ताखी मैं कैसे कर सकती हूँ। सो कमिंग योर वे इज अ सॉन्ग और उसके बाद मैं यहीं बैठी हूँ, मिलते हैं कुछ गानों के उस पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

सुभाष घई की फिल्म थी ये राम लखन, और सुभाष घई का सुपरस्टिशन शेयर करूं मैं पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सुभाष घई का ये सुपरस्टिशन तो हम उनकी हर फिल्म में देख, इनफैक्ट जो फिल्में उन्होंने 2000s में बनाई उसमें भी देख चुके हैं, फिर चाहे वो परदेस हो या फिर तालो। तो सुभाष घई को हमेशा लगता है कि वो जब भी कोई फिल्म बनाते हैं उसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है, और जिस भी फिल्म में वो खुद आते हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। मुझे याद है कि

फिल्म रामलखन में भी उनका एक स्पेशल अपीयरेंस होता है, छोटा सा। यादें में इनका स्पेशल अपीयरेंस होता है, ताल में, परदेश में, इन सब में आप सुभाष घई को देख सकते हो। वैसे आज कुछ ऐसे ही टोटकों की बात हो रही है, कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशंस की बात हो रही है जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स मानते हैं। कम राइट बैक, विल शेयर मोर विद यू। मैं हूँ श्रेया, यू कैन कैच मी ऑन फेसबुक और इंस्टा, हैंडल है मेरा आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

मैं हारी जा जारी

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा

0: Gana Sonega.
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

नासिर हुसैन साहब ने अपने फेवरेटिज्म को छिपाने के लिए बात कही हो या फिर अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को, वही आशा पारेख, लेकिन वो हर बार ये कहते थे कि आशा पारेख उनके लिए बहुत ही लकी हैं एंड दैट इज व्हाई वो उनको अपनी फिल्मों में रिपीट करते थे। पुरानी जीन्स पे आफर श्रेया के साथ आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ हमारे बॉलीवुड स्टार्स की। सो कैमरे के पीछे डायरेक्टर नासिर हुसैन, कैमरे के उस पार आशा पारेख, और इस जोड़ी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी जिनमें से तीन तो थी जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल एंड ऑफ कोर्स मोर ऑफ देम। लोग तो ये भी कहते हैं कि नासिर हुसैन और आशा पारेख के बीच में ना लव एंगल था। आशा पारेख ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी डायरेक्टर साहब से बात हुई उन्होंने इसको सुपरस्टिशन का एंगल दिया, आशा पारेख को अपनी फिल्मों के लिए लकी माना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, तो इसी बात पे तीसरी मंजिल का गाना हो जाए, डायरेक्टेड बाय नासिर हुसैन एंड हीरोइन बीइंग ऑफ कोर्स आशा पारेख। अप नेक्स्ट फॉर यू

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इनकी फिल्मों में ज्यादा काम तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ इनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि काका हमेशा इन्हीं का नाम रेकमेंड करते थे, और इसीलिए 9 फिल्में इन्होंने एक साथ करी विच वॉज सुपर डुपर हिट। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, आज ना मैं सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, हमारे बॉलीवुड स्टार्स के कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस जो उन्होंने एकदम शिद्दत से फॉलो किए। अगर काका की बात लें यानी राजेश खन्ना जी की बात लेना, तो उनके लिए मुमताज जी बहुत लकी थी, ऐसा राजेश खन्ना ने इंटरव्यूज में भी कहा, क्योंकि उनकी जोड़ी को बहुत एक्सेप्टेंस मिली, उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत लाइक किया। एंड मुमताज जी उनके साथ काम करने से पहले ना बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थी, लेकिन काका और उनकी जोड़ी ए ग्रेड थी। तो राजेश खन्ना मुमताज को अपनी हर फिल्म के लिए बहुत लकी मानते थे, और इसीलिए डायरेक्टर्स को उन्हीं का नाम सजेस्ट करते थे। आपकी कसम हो, दो रास्ते हो, अपना देश हो, प्रेम कहानी हो, सो मेनी ऑफ देम, पूरी 9 हिट फिल्में। तो इन्हीं दोनों की केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्वीट सेंशस गाना मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें थोड़ा नटखट हो रही है मुमताज जी एज ऑलवेज, उन्हें प्यार से बाय द वे काका मोटी कहा करते थे, और राजेश खन्ना ऐसे दिखा रहे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनकी हीरोइन की बिंदिया चमकेगी या चूड़ी खनकेगी। पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: तुम्हारे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

इस फिल्म में लीड हीरो तो ऋषि कपूर थे और उनके साथ सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर रहे थे राकेश रोशन। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ। राकेश रोशन साहब का सुपरस्टिशन तो हम सबको पता है, जब उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की तो सब फिल्में केस से शुरू होनी थी, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई एज अ फिल्म मेकर 1987 की खुदगर्ज वो सुपरहिट फिल्म बनी। फिर उसके बाद उन्होंने बनाई के से ही खून भरी मांग, फिर उनको के का ना एकदम चस्का चढ़ गया। ही बिकेम लाइक अब भाई मेरी जितनी फिल्में क से शुरू होंगी। फिर उन्होंने बनाई किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया के सीक्वल, क्रिश बनाई क्रिश के सीक्वल, ऑल ऑफ दैट। अब अगर कुछ करने से आपका आपकी चीजें अच्छी हो रही है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सुपरस्टिशन तो आ ही जाता है ना उस चीज को लेकर के। राकेश रोशन साहब के साथ भी यही हुआ, किरण नहीं के। पुरानी जींस में आप श्रेया के साथ जो आज कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हो फॉर बॉलीवुड स्टार्स। अगले कौन होंगे बताऊंगी, कम राइट बैक।

राज कपूर साहब ने ना लता जी को इस बात के लिए बहुत ब्लेम किया, क्योंकि वो लता जी को अपनी फिल्मों के लिए लकी मानते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशंस ऑफ आवर बॉलीवुड स्टार्स टुडे। एंड राज कपूर जो थे ना, उनकी हर फिल्म में लता जी का गाना होता था। इनफैक्ट सिर्फ लता जी ही गाती थी अगर फीमेल गाना है तो। लेकिन एक फिल्म जिससे ये प्रथा को रोका गया वॉज मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में लता जी की आवाज नहीं थी और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एकदम धड़ाम गिरी, फ्लॉप हुई, तो राज कपूर ने एक्चुअली में लता जी को भी ब्लेम किया कि दीदी तुमने इस फिल्म में गाना नहीं गाया था मेरे लिए, इसीलिए ये अनलकी रही। पुरानी जीन्स पे राज कपूर साहब की फिल्म जिसके लिए लता जी ने गाना गाया, वैसे तो बहुत सारे पर ये वाला मैं स्पेशली लेकर के आई हूँ। सुनिए और वापस आइए श्रेया के साथ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
2: कौन है पता?
1: कोहली।
2: अरे तू भी आस।
3: भाई
2: दोनों इधर। हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम

0: टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोट नहीं पता। भाई
1: भाई भाई।
0: तुम दोनों गग गोट हो।
1: वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची का
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी
2: आस। इधर
1: हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: से है।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट

0: का कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है सक्सेस के बारे में सबसे बड़ा झूठ कौन सा बोला जाता है? आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मैं जीतू कृष्ण मूर्ति को पढ़ रहा था और उन्होंने कमाल की एक बात कही कल्चर के बारे में और कैसे हमारे एनवायरमेंट में जो होता है वो बहुत हमको इम्पैक्ट करता है। तो आज के जो 20-30 साल के जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो आज जिंदगी संभाल रहे हैं, उनको सबसे बड़ा झूठ सक्सेस के बारे में क्या बेचा गया है आपके हिसाब से?
4: सक्सेस जो कई बार आजकल देखे जाते हैं वो एक्सटर्नल लेवल पर देखे जाते हैं। सक्सेस एक्चुअली क्या होती है? एक है फाइनेंशियल सक्सेस, जिसमें आपके मटेरियल कंफर्ट्स हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर सिर्फ वो ही सक्सेस नहीं होते। आपके पास सब प्रकार के मटेरियल कंफर्ट्स हैं पर आपकी रिलेशनशिप कोलैप्स हो रही है, लोग आपको दुआ नहीं देते, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, और उससे भी बड़ी बात आप लोनली फील करते हैं, आपको खुशी नहीं है, आप अंदर से कंटेंट नहीं है। तो सक्सेस, सफलता का मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली, सोशली।
3: ये आपने बहुत अच्छे से कमाल से एक बार पहले भी कहा था मुझे, धन मन जन, इस तरह से आपने कुछ समझाया था,
4: है ना? मन भी शांत हो, तन भी हमारा कंफर्टेबल हो, धन भी है, और जन रिलेशनशिप्स, कई जगह पर रिलेशनशिप्स कोलैप्स हो रही है, उसका भी तो टोल होगा ना
3: जी।
4: तो सफल होना जरूरी है, लेकिन ये सारे पैरामीटर्स चेक करें। और मुझे सफलता शब्द ज्यादा पसंद है सक्सेस से ज्यादा हिंदी में, क्योंकि सफलता का मतलब होता है सफल करना। एक व्यक्ति जो सफल है, जो उसकी निशानी होगी कि जो कुछ उसके पास है, चाहे वो स्किल है, टैलेंट है, एक्सपर्टीज है, धन है, समय है, वो फिर उसको दान में

0: लगा देता है कि जो मुझे मिला है वो हम शेयर करें। और दान एक ऐसी चीज है, आप जितना देंगे
1: उतना ही वापस मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। हम
0: कोई भी चीज बढ़ाने का तरीका है कि आप उसको देना शुरू करें। तो सफलता माना सफल करना, तो हमारा जो सफलता होता है अक्वायर करना, सब अक्वायर करते रहना, पर एक्चुअली सफलता है अक्वायर करना नहीं, शेयर करना। सो इफ यू सी दैट इन समबडी देन यू नो कि वो सफल है, वो सिक्योर होते हैं सफल लोग।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में क्या फर्क होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, तो ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि सक्सेस के पैरामीटर्स हमने शायद धन से मापे हो, फाइनेंशियल सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हम अंदर बहुत मिजरेबल होते हैं, हम बहुत खोखले से होते हैं, और बात हमको ना बहुत सालों बाद रियलाइज होती है, क्योंकि उस समय हम जब 20 30 40 साल के होते हैं हम काम में इतने मसरूफ होते हैं कि हम रियलाइज नहीं करते। और जब आपको अपने साथ बैठना पड़ता है, जब शायद काम थोड़ा कम हो गया होता है, रिलेशनशिप शायद आगे मूव ऑन हो चुके होते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं यार मैं लोनली भी हूँ, सॉलिट्यूड हो चाहता था लेकिन लोनली हो गया। तो ये
4: दोनों में फर्क है, एक एकांत है, एक अकेलापन है।
3: तो ऐसा क्यों होता है कि ये बहुत बाद में समझ में आता है, और ये शायद स्पिरिचुअलिटी का लेसन हमें कोई पहले सिखाता ही नहीं।
4: से दो कारण होते हैं, एक जो कारण है कि जो सफलता आपने बाहर के प्राप्त करी उसका तरीका क्या था। कभी कभी आपने बाहर की सफलता गलत नहीं है, धन संपत्ति गलत नहीं है, कईयों को लगता है धन माया है, धन माया नहीं है, लोभ माया है।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
4: आपने अगर उसके लिए कहीं चीट किया, किसी को दुख दिया, ग्रीड इज रॉन्ग। धन तो धन होना और एक कंफर्टेबल लाइफ होना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपने वो कमाने में आप अनएथिकल रहे थे, कईयों को दुख पहुंचा, कईयों को चीट किया, आपके किसी कर्म से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो जो एनर्जी है वो लौट करके आती है। इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है कि आप बाहर से बहुत सफल हैं लेकिन तरीका अगर ठीक नहीं था तो वो अकेलापन खालीपन महसूस होता है। दूसरा जो कारण है कि आपने बाहर तो बहुत मेहनत करी लेकिन अंदर जो खुशी है वो मन की स्थिति है। आपके ख्यालात कैसे हैं? अगर आपने अपने ख्यालातों को खूबसूरत नहीं बनाया, बना आप बहुत सफल हैं और फिर भी आप किसी से तुलना कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके आप उनके प्रति आपकी भावनाओं में शुद्धि नहीं है, आपकी सोच के अंदर ही पॉजिटिविटी नहीं है, तो बाहर से आप बहुत सफल हो सकते हैं, बिलियनर मिलियनर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा सोचना नहीं आता
3: तो खुश नहीं होंगे,
4: नहीं हो सकते अपने बारे में, दूसरे के बारे में, परिस्थिति को लेकर के अगर आप सोच अच्छा नहीं सकते तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो एक, बाहर का धन कमाए लेकिन अंदर का धन, ज्ञान धन, वो ज्ञान धन की भी कमाई करना, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना, वो आना चाहिए। और दूसरा, बाहर का भी जो धन कमाए उस धन में दुआ लगे होनी चाहिए सबके। घर में कोई ऐसा धन नहीं आना चाहिए क्योंकि धन से अन्न आता है, अन्न का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। अगर आपने ऐसा कोई धन कमाया जिसमें किसी की बद्दुआ है तो उसका प्रभाव सारे घर के ऊपर पड़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपका पर्सपेक्टिव आपकी सोच को 360 डिग्री बदल सकता है. कैसे? आइए जानें.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सिस्टर, एक बार हम बात कर रहे थे तो आपने नजरिए के बारे में बात की थी और आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था जहाँ आपने ये पानी की बोतल ली थी और ऐसे बताया था कि देखो तुम्हारी तरफ से क्या दिख रहा है, मेरी तरफ से क्या दिख रहा है. बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, बोतल के समक्ष आपने इसको पेश किया था कि कई बार नज़रिया हमारा जो पोजीशन होता है उससे बनता है. हम कुछ और देख रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और देख रहा होता है. तो उसमें एक सवाल आया है, तारा चौहान जी लिखती हैं कि समस्या तो यह है कि कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता और वो हमारी जगह आकर देखना नहीं चाहता, तो समस्या का समाधान कैसे होगा?
4: कोई मना, वो वेट कर रहे हैं कि दूसरा बदले.
3: जी,
4: वही हमने कहा था कि ये जो एक इंतजार है कि दूसरा बदले,
3: वो कभी नहीं
4: होगा, वो नहीं हो सकता.
3: जी,
4: जरूरी है हम उनको समझें. और कभी कभी अगर आप किसी का नजरिया नहीं भी देख सकते, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता, ये तो एक एग्जाम्पल था, तो ट्रस्ट करें. ट्रस्ट करना जरूरी है कि अगर इस समय पर ये वो बात कह रहे हैं, कुछ उनका पर्सपेक्टिव होगा,
3: वो सही ही होगा.
4: सही ही होते हैं, हमारे और उनके संस्कार अलग होते हैं. हर बार उनके शूज में जाकर उनके नजरिए को नहीं देख सकते, कई बार ट्रस्ट करना पड़ता है. ट्रस्ट करना पड़ता है, मतलब कई बार उनको भी नहीं पता होता. फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत जल्दी जल्दी डाउट करता है और वो ये कहेगा नहीं, सबको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सबको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, ट्रस्ट अच्छी चीज है.
3: जी.
4: पर वो नहीं कर पाता. आपको समझ में नहीं आता कि मेरे समझाने के बाद भी उनको ये बात समझ क्यों नहीं आती. देन यू हैव टू ट्रस्ट कि उनके पास्ट में कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा, कोई धोखा उनको मिला होगा इस जन्म में या पिछले जन्म में होगा, इसलिए उनका बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है. सो यू जस्ट ट्रस्टिंग द पर्सन कि अगर उनका ये बिलीफ है उसके पीछे कोई कारण होगा. हम ट्रस्ट नहीं करते, हम अपसेट हो जाते हैं.
3: हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं.
4: कि हमारे समझाने के बाद भी इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है. बिलीफ सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं. वो एक बार समझाने से नहीं जाएंगे, एक बार समझाने से ट्रिगर करेंगे. लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे अगर आपका रिश्ता अच्छा होगा, मे बी दे विल एक्सपेरिमेंट विद समथिंग दैट यू आर सेइंग.
3: ये तारा चौहान जी के सवाल से मुझे एक बहुत अच्छा कोटेशन याद आ गया. डॉक्टर वेन डायर या ड्वायर ऐसे बोल के अमेरिकन सेल्फ हेल्प ऑथर हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं. उन्होंने बात कही थी, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स दैट यू लुक एट चेंज. बहुत खूबसूरत बात है लगी मुझे, और बिल्कुल आपके बॉटल वाले एग्जाम्पल से बहुत फिट बैठता है.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

काशीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्व

0: पुरपतेस्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं संप्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।
1: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया। गोदावरी महतो जी लिखती हैं कि मेरे पड़ोस में एक कपल रहती है जहां पति बहुत बड़ी बड़ी गालियां खुद देते हैं लेकिन उल्टा अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं और उन्हें ही दोष देते हैं। ये स्थिति देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसी स्थिति में मैं उनकी मदद कैसे कर सकती हूँ बिना स्थिति को और बिगाड़े?
3: सी, इसमें जरूरी होता है, कई बार हम क्या करते हैं, जिसको अब्यूज किया जा रहा है उसके प्रति तो हमें बहुत रहम आता है।
2: हाँ।
3: लेकिन जो अब्यूज कर रहा होता है ना, वो भी कोई बहुत पावरफुल नहीं है।
2: लेकिन ज्यादातर हमें लगता है वो बहुत पावरफुल पोजिशन में है, इसलिए वो अपनी पावर दिखा रहा है।
3: आज हम सबको पता है कि हम जब गुस्सा करते हैं,
2: हाँ,
3: लगता है कि जो गुस्सा कर रहा है वो पावरफुल है,
2: बट ज्यादातर वो आपे से बाहर ही होता है,
3: वीक ही है ना। उसको लगता है शायद चिल्ला करके या कंट्रोल करके या अपनी पावर को यूज करके मेरा काम हो जाएगा, फियर क्रिएट करके। एक्चुअली वो भी दर्द में है, वो ज्यादा दर्द में है। आपको गर्म कोयला उठा करके किसी के ऊपर फेंकना है, आपका हाथ तो जलेगा ही। जब आप किसी को अब्यूज कर रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं, आप अपने मन में सोच रहे हैं और अपने मुख से बोल रहे हैं, आपको तो वो डिप्लीट करेगा ही, आपको तो वो हार्म करेगा ही। सामने वाला तो कई बार यूज्ड टू हो जाता है। जब रोज रोज हो रहा होता है ना, तो वो सुन करके भी नहीं सुनता। सुन करके भी नहीं सुनना मना, आप बोल रहे हैं उसके कान सुन रहे हैं पर वो अपने मन में नहीं चलाता। वो अपने मन में कहता है ये तो इनका रोज का है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली देयर कम्स अ पॉइंट वो इम्यून हो जाता है, लेकिन करने वाला हमेशा डिप्लीट होगा। तो पहली चीज तो ये समझना है कि दोनों ही सफर कर रहे होते हैं, और हमारा जो कंपैशन है वो दोनों के प्रति ही होना चाहिए। इसमें हम साइलेंट गुड विशेस रख सकते हैं, एक चीज। दूसरा, हमेशा हर एक के कार्मिक अकाउंट में एंटेंगल होने की जरूरत नहीं है जब तक उनको सपोर्ट नहीं चाहिए। आप जरूर ऑफर करें, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति वीक है, आपका सपोर्ट चाहता है, आप सपोर्ट चाहता है तो जरूर सपोर्ट दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि उनको सपोर्ट चाहिए ही नहीं, वो अपने में उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, देन आई थिंक
4: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्च।

0: It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: सिस्टर न्यूसी पटेल हैं, वो लिखती हैं कि मेरा एक दोस्त हर समय ओवरथिंक करता रहता है, रात भर उसे नींद नहीं आती, लेकिन अपनी गलतियों और दिन भर की बातों को सोचते सोचते वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। सुबह भी ताजा महसूस नहीं करता और अक्सर उसे सिर दर्द रहता है। ऐसे में वो अपने मन को शांत करके अच्छी नींद कैसे पा सकता है?
4: मन को भोजन नहीं दे रहे है ना।
3: हाँ,
4: अगर आप बॉडी को, जैसे बॉडी के लेवल पर देख लें, बॉडी वीक होती जा रही है, फटीक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप क्या क्या करेंगे? आप कुछ तो करेंगे ना। अच्छी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सही समय पर सोएंगे। तीन चीजें हम करते हैं, हम कहते हैं एक्सरसाइज है, फूड है, स्लीप है, बॉडी ठीक होगी। ऐसे मन है, मन का भोजन है, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वही मन के अंदर चलता है। अब अगर मन में ओवरथिंक कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग हमेशा नेगेटिव होती है। किसी दिन मुझे किसी ने थोड़े समय पहले कहा, काश मैं पॉजिटिव को ओवरथिंक करता तो कितना अच्छा होता। फिर उसको आप ओवरथिंकिंग नहीं कहते। ओवरथिंकिंग मना टू मेनी थॉट्स। व्हेन इट्स टू मेनी थॉट्स, इट इज ऑलवेज नेगेटिव।
3: बिल्कुल सही।
4: अगर वो पॉजिटिव है, वो टू मेनी नहीं हो सकते। वो हमेशा कम होते हैं, क्योंकि दो थॉट्स के बीच का जो गैप है ना, वही सुकून है, वही साइलेंस है, वही शांति है। तो वो जितने थॉट्स की स्पीड रिड्यूस होती जाएंगी, वही शांति आपको एक्सपीरियंस होगी।
3: क्या बात।
4: तो वो जो दोस्त है, अगर दो तीन चीजें वो करे अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, पहली चीज कंटेंट।
3: अच्छा कंटेंट देखें, सुने,
4: कोशिश करें ना। मैं हमेशा कहती हूँ 20-30 मिनट्स आप अच्छा सुनना शुरू कर दो, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा लाइफ के प्रति।
3: बिल्कुल सही।
4: वो हम इतना सा भी कहते हैं ना, वो ग्लास है, किसी को आधा खाली दिखाई देता है, किसी को आधा भरा दिखाई देता है, वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है।
3: बिल्कुल।
4: सेम सीन में यू सी

0: हाँ अच्छा खाएं, बहुत
1: जैसा अन्न वैसा मन,
0: सात्विक खाना खाएं, अच्छा खाएं, समय पे खाएं।
1: सात्विक भगवान की याद में बनाया हुआ अन्न, जो अन्न है वो तन के ऊपर प्रभाव डालता है, पर किस कॉन्शियसनेस में बनाया है उसका प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। कोई भी थोड़ा समय ये करके देख ले एक्सपेरिमेंट, वो जो अन्न है सात्विक भी है पर खास बहुत हाई कॉन्शियसनेस में भगवान की याद में बनाया हुआ है। दो तीन शिफ्ट आप लेकर के आएंगे, आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा। वी डोंट डू एनीथिंग फॉर द माइंड।
0: वेरी नाइस न्यूसी जी, आई होप आपके फ्रेंड के लिए बहुत आई मीन हेल्पफुल हो। और मुझे एक चीज पता है कि चिंता करने से कल की परेशानियां दूर नहीं होती हैं, आज की जो शांति है वो जरूर छिन जाती है।
1: 100%।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर, एक अनोनिमस सवाल आया है कि मेरे पति को लिवर डिजीज है और हम काफी सालों से इससे जूझ रहे हैं। ये स्थिति इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से चैलेंजिंग है। कृपया बताएं कि हम इस परीक्षा का सामना कैसे करें और अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत कैसे रखें।
2: देखिए, कहते हैं पेन इज कंपलसरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल।
1: जी,
2: अब जो लिवर डिजीज है उस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना, कोई भी नहीं चाहता बाहर से आइए। आप बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाएं, जा भी रहे होंगे, इलाज कर भी रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उसके बारे में घर में क्या हम सोच रहे हैं या कॉन्वर्सेशन है, वो सफरिंग क्रिएट करता है। तो सफरिंग क्या है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे परिवार में ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान हमें मदद क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, ये जो अंदर में डायलॉग चलता है ये सफरिंग क्रिएट करता है। उसकी जगह जो कॉन्वर्सेशन है कि अगर भगवान ने ये आया है हमारे सामने, मे बी वी हैव द स्ट्रेंथ टू डील विद इट। हमें पता है अच्छे से अच्छे डॉक्टर हमें पहले भी मिले हैं, आगे भी मिले हैं, हम ये जर्नी एक साथ मिलकर के करेंगे और जो समय है उसको बेस्ट बिताएंगे। इसमें दो चीजें ये हो जाती हैं। पहला, अगर आप इमोशनली सफर कर रहे होते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट भी काम नहीं करता
1: जी।
2: क्योंकि डॉक्टर्स आपको ट्रीट कर सकते हैं, हील आपको करना है,
1: बहुत इम्पोर्टेंट।
2: आपकी नेगेटिव एनर्जी हीलिंग को स्लो कर देती है, कभी कभी स्टॉप भी कर देती
1: क्या
2: है,
1: बात है।
2: सेकेंडली, जितना समय आप साथ हैं और जो आप बेस्ट टाइम बिता सकते हैं
1: उसको एंजॉय कर रहे हैं,
2: आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे। कितना टाइम किसके पास है वो तो किसी को भी नहीं पता है।
1: सही बात,
2: कोई कल भी शरीर छोड़ सकता है। इट इज नॉट हाउ मच यू हैव लिव्ड, इट इज हाउ वेल यू हैव लिव्ड।
1: क्या बात है, और तो वैसे भी इनको लिवर डिजीज है तो लिव करो।
2: हाँ, मतलब आप उस चीज को इतना देखो, राई को पहाड़ बनाना है या पहाड़ को राई बनाना है ये हमारे ऊपर है। आप उस चीज को समझे, अच्छा ये है, I'm not saying कि हम उसके लिए कुछ करें नहीं, हम बेस्ट डॉक्टर्स बेस्ट ट्रीटमेंट करें, पर हम खुश रहें, मेमोरीज क्रिएट करें, चेरिश करें, जो टाइम हमारे साथ है उसको अच्छे से स्पेंड करें और उस चीज को इतना बड़ा नहीं करें, उसको पहाड़ नहीं बनाए। इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे करके जो करना है उसके लिए करते जाएं। ये एक अपने से कॉन्वर्सेशन करके फैमिली को डिसाइड करना है, आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
5: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
9: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
8: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.

0: इट्स हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

मन कस्तूरी रे। जग दस्तूरी रे मन कस्तूरी।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर शिवानंद नारगंड से लिखते हैं और उनका सवाल है कि क्या मानसिक स्वास्थ्य पर काबू सिर्फ ध्यान से काम कर सकता है या अलग अलग काम करने से मन को काबू हम कर सकते हैं, इसमें कौन सा सरल और सुंदर मार्ग है?
3: सी, मन को पावरफुल बनाने के बहुत तरीके हैं, उसमें मेडिटेशन सबसे पावरफुल टूल है।
2: जी,
3: ये सबसे पावरफुल टूल है क्योंकि आप कॉन्शियसली अपने मन को दिशा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं अभी, जैसे एक पंछी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए।
2: हाँ।
3: अगर वो एक पंख से उड़ता है तो उड़ तो सकता है लेकिन थोड़ी हाइट तक उड़ करके गिर जाता
2: जी।
3: है। ऐसे ही मेडिटेशन के अंदर नॉलेज और मेडिटेशन ये दो पंख होते हैं।
2: अच्छा,
3: क्योंकि हमने जैसे कई बार बात करी है कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है
2: तो फिर आप करेंगे कैसे?
3: आप कैसे अपने अपने थॉट्स को कैसे दिशा देंगे? समझो, मुझे ये थॉट आ रहा है अंदर में कि पता नहीं क्या होगा, एग्जाम में पास होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, इतनी बड़ी बीमारी है, पता नहीं डॉक्टर, दिस इज माई नेगेटिव थिंकिंग। अब मेरे पास कुछ तो नॉलेज चाहिए ना जो मैं अपने मन को ट्रांसफॉर्म करके कह सकूं कि नहीं, बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं भी इंटरव्यू क्लियर हुआ तो एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा, या बीमारी है तो शरीर को है, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर बीमार है, अच्छा इलाज लेंगे, अच्छा डॉक्टर लेंगे, ठीक हो जाएगा ना। ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए और स्टेबल फील करने के लिए आपके पास ज्ञान चाहिए। ज्ञान बोलो, नॉलेज बोलो, विजडम बोलो, सत्संग बोलो, सत्य का संग। कुछ हम अच्छा सुनते हैं तो हम अच्छा सोच पाते हैं, तो ये दो चीजें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा, सेवा भी आपके मन को बहुत एम्पावर करती है। आप किसी की सेवा करते हैं उससे दुआ मिलती है।
2: हाँ।
3: वो प्योर एनर्जी भी आपके मन को शांत करती है। तो कोई भी ऐसी एक हैबिट जो आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग की कोई सेवा करते हैं, किसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की कोई मदद करते हैं, वो दुआ भी आपके पाप को काटती है, पुण्य को जमा करती है, आपके मन की हीलिंग करती है।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Only on Mirchi. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: ओह नो,
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक और सवाल आया, वो कहते हैं कि जब मैं डीप मेडिटेशन में होता हूं तो अक्सर किसी के मेडिटेशन एरिया में आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है?
2: ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का पर्पस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमें डिस्टर्ब करती है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, आपने उस समय टीवी क्यों चलाया, आपने उस समय फोन पर क्यों बात करी। इस वन टाइम समबडी वाज शेयरिंग कि वो भाई भी ऐसे ही वेरी सिमिलर क्वेश्चन कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ उसी समय मेरी वाइफ फोन पर जोर जोर करके अपने सिस्टर से बात करती है। फिर उनको कहा, देखो ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। कहते कौन सी आवाज? कहते ये जो जोर जोर की आवाज है, तो नीचे एक सब्जी वाला जोर जोर के सब्जी बेच रहा था
1: लेकिन वो नहीं सुनाई दिया।
2: तो कहते वो तो उसका काम है, वो तो वो करेगा, उसको चिल्लाना पड़ेगा। उस सब्जी वाले का जो काम है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था,
1: लेकिन अपनी बीवी के तेज फोन पे बात करना आपने एक्सेप्ट नहीं किया।
2: आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ
1: उस समय वो ना करे।
2: सो अगर हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो वो कोई हमारी फील्ड में आता है उसके कारण नहीं होते। हमारे मन ने कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट की होती है, वो फुलफिल नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, अंदर हो रहे हैं ना डिस्टर्ब। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना।
1: बिल्कुल।
2: अपने को याद दिलाएं कि मेडिटेशन का पर्पस ही ये है कि हमें कुछ भी हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि इररिस्पेक्टिव सिचुएशन कैसी है, इररिस्पेक्टिव लोगों का व्यवहार कैसा है, इररिस्पेक्टिव वेदर कैसा है, चैलेंजेस कैसे हैं, आप अंदर में काम और स्टेबल है और उस स्टेबिलिटी से आप रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है।
1: और अगर अभी नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे हो जाएगा। अपने आप को भी वक्त दें और दूसरों पर भी इरिटेट ना हो।
2: जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज। अगर सुबह सुबह का तुम्हारा थॉट ये था कि बस 5 मिनट और सोना है तो कंग्रेचुलेशंस, तुम ऑफिशियली इंडियन हो, क्योंकि हम अलार्म को स्नूज करने के बाद भी उससे नेगोशिएट करते रहते हैं। ये वो शो है जो तुम शायद थोड़ी सी सुबह सुबह की ठंडी में सुन रहे होगे, लेकिन शो के अंदर बहुत गर्मी होगी बाबा, क्योंकि ये है मिर्ची पर। चाय हो या कॉफी हो, ट्रैफिक हो या वर्क फ्रॉम होम हो, तुम्हारा मॉर्निंग कम्यूट हो या किचन में परौंठे को फ्लिप करना हो, सारे डिसीजंस मेरे साथ लेने हैं तुम्हें अगले कुछ घंटों के लिए। मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और आज का रूल काफी सिंपल है। आज नो ओवरथिंकिंग बिफोर लंच टाइम। पहले मिर्ची पर प्रिसिला को सुनो, उसके बाद दुनिया की प्रॉब्लम्स, प्रायोरिटी, पीपल एंड परेशानियों से जूझ लेना। सो टर्न अप द वॉल्यूम, गेट कंफर्टेबल एंड लेट्स मेक दिस मॉर्निंग अ लॉट मोर मिर्चीदार देन इट ऑलरेडी इज। एंड हे, मुझे बताओ कि तुम्हारी मॉर्निंग में असली ड्रामा किस वजह से होता है? तुम्हारी अलार्म क्लॉक से होता है, तुम्हारे ब्रेकफास्ट की वजह से होता है, या फिर तुम्हारे बॉस की वजह से? मुझे मैसेज कर सकते हो तुम। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, और व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033364 7244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: AALOL.com or call 917-440-9266.
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड अ पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज्ड टिल मंडे, व्हाट डू वी डू?
6: Don't worry, I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present...
8: No, basically, justice to you.
9: Mujhe justice.
7: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat and many others.
10: Is baar khatra kab, kaise aur kahan se aayega, batana mushkil hai.
7: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion, in cinema 2nd October.
10: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai, aakhri hissa baki hai.
7: Released by Zee Studios nationwide.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Suno, brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
15: to aaiye, fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
14: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
15: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
19: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
18: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
20: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
21: एक ही होता है।
18: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। This is Mirchi Mornings and let's find out कि आज की डेट कितनी बिजी हुआ करती थी पुराने दिनों में, यानी कि हिस्ट्री में आज के दिन का क्या सिग्निफिकेंस है। आज है सितंबर 28, 1066 में विलियम द कॉन्करर लैंडेड इन इंग्लैंड एंड किक्ड ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। मतलब कि बंदा लिटरली बोट से आया एंड ही सेड ओके न्यू मैनेजमेंट। जंप टू 1781, अमेरिकन एंड फ्रेंच फोर्सेस बिगैन द सीज ऑफ यॉर्कटाउन, एक मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। हिस्ट्री में भी कोलैबोरेशंस होती थी गाइस, सिर्फ आज के जमाने में नहीं। देन 1924 में यूएस आर्मी एविएटर्स कंप्लीटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड, लगे पूरे 175 डेज। आज 17 घंटों की फ्लाइट में हम कहते हैं यार ये कितनी लॉन्ग जर्नी है, हैशटैग रिस्पेक्ट। एंड देन आया 1928, स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। बेसिकली मेडिकल वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। 2020 में द ग्लोबल कोविड डेथ टोल क्रॉस 1 मिलियन, अ मच हैवियर मोमेंट इन हिस्ट्री एंड अ रिमाइंडर ऑफ हाउ डीपली द पैंडेमिक इफेक्टेड ऑल ऑफ अस एंड हाउ फ्रेजाइल वी वर। एंड आज के दिन वर्ल्ड रेबीज डे भी मनाया जाता है, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन एंड रिमेम्बरिंग लुई पाश्चर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेबीज वैक्सीन। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, यू वेकिंग अप विद मिर्ची मॉर्निंग्स। कुछ भी शेयर करना हो तो व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244, दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर। एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
7: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
8: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, हिजलिन।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
12: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
13: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट। अक्टूबर 10th 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड मोंगोबाशी SCA.org। कॉन्टैक्ट 650-305-5624।
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा।

0: important loan program that offers our investors looking to build a real estate portfolio no personal income verification loans. This is Jason Doshi with your STCF Mortgage Market Update. Welcome home.
1: अब नंबर जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हें समझ में आ गया है. एक नंबर नोट करो 9033 मिर्ची, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर 9033647244. एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. जल्दी जल्दी से मुझे फॉलो करो एंड सेंड मी अ हाय. एंड अभी चलाती हूँ तुम्हारे लिए मिर्ची, दे आर बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
2: दिस मॉर्गेज अपडेट इज ब्रॉट यू बाय SD कैपिटल फंडिंग.

0: 얘들아, 얘들아, 얘들아, 얘들아, 얘들아, 얘들아,
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
0: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
0: कौन है बता?
1: कोहली।
0: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और

0: 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
2: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
4: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरामा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
5: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए,
6: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए।
4: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत एंड मेनी अदर्स।
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
4: द एंड वी बीन वेटिंग फॉर, दृश्यम द कंक्लूजन, इन सिनेमा 2 अक्टूबर।
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
4: रिलीज बाय जी स्टूडियोज नेशन वाइड।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। जरा वेदर का हाल चाल पता करते हैं। आज एडिसन में स्काइज आर स्टेइंग क्लाउडी, रेन एंड ड्रिजल आर वेरी मच ऑन द गेस्ट लिस्ट टुडे, एंड मॉर्निंग शावर्स आर लाइकली। टेम्परेचर वाइज वी आर हैंगिंग अराउंड द अपर 50s राइट नाउ, हेडिंग अप टू अबाउट 65 डिग्रीज फारेनहाइट। और हाँ, ह्यूमिडिटी आज फुल देसी मोड में है, 92 से लेकर 96% की ह्यूमिडिटी है, मतलब बाल सेट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है आज। बी नेचुरल टुडे। Winds are coming in from the north, so it's going to feel cooler than the actual temperature. And with wet roads plus lower visibility, morning commuters, thoda sa extra time leke niklo and thoda sa zyada precaution lene ki zarurat hai as per the National Weather Service. One important heads up though, there's a coastal flood advisory in effect through around 2 p.m. So if your route takes you near flood prone or low lying areas, check conditions before you head out, okay? And good news bhi hai, mere paas air quality index is good and tomorrow starts looking much nicer. Bahar agar nikalna hi hai to wear your sun protection SPF 50++++ ke saath wala. Keep yourself hydrated and of course mirchi ki vibes bana kar rakho. Aur mujhe tum apne weather pictures bhej sakte ho, morning chaos ki pictures bhej sakte ho. WhatsApp par 9033 mirchi is my number. That's 9033647244. And you must also follow me on Instagram and X. Mera handle name hai mirchi pris, that is mirchipris. Abhi weather check ho chuka hai, umbrella carry karna hai. कॉफी चेक, मिर्ची ऑब्वियसली इज ऑन, मिर्ची की वाइब्स बनाए रखो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

है दिल तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफो hips lips eyes thighs sab gazab sab gazab sab

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू मिर्ची आवर का 3। सबसे पहले नवंबर मिड टर्म्स के बाद जो पीरियड होता है, वोट्स काउंट होना और ऑफिशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बीच में, उसे बोलते हैं काउंटिंग विंडो। सम इलेक्शन एक्सपर्ट्स आर वार्निंग दैट ट्रंप एलाइज कुड पोटेंशियली यूज दैट पीरियड टू एम्पलीफाई डाउट्स अराउंड द रिजल्ट। इट्स अ रिपोर्टेड कंसर्न, नॉट अ प्रेडिक्शन, बट डेफिनेटली समथिंग इलेक्शन ऑफिशियल्स आर वॉचिंग क्लोजली। नंबर 2 पर रशिया स्ट्रक द हेडक्वार्टर।

0: Milci. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virba, la burga. Milci, burga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine, fine, fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे 4 बजे सर, सैटरडे 4 बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे सर, संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे
2: सर। संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है वो, 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Morga, na vejt kesat. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
7: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
10: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
11: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: 9 nights, one divine spirit.
15: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
14: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
15: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th, and Sharad Purnima Garba on the 25th.
14: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
18: अब मिर्ची का।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
6: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
9: इट्स 2 AM, fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
10: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
9: Wait, they can see us on Sunday?
10: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
11: Wow! यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
13: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
14: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
15: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
16: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
20: 20 मिनट्स ऑफ बैक टू बैक म्यूजिक ब्रॉट टू यू बाय RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 92.7 FM एंड 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे तो कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा बर्थडे जो है ऑफिशियली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड हॉलीवुड से आज है जॉश रैडनर, एके टेड मोस्बी फ्रॉम हाउ आई मेट योर मदर का हैप्पी वाला बर्थडे। सो बेसिकली इफ यू आर सेलिब्रेटिंग टुडे, यू हैव परमिशन टू टेल एवरीवन, किड्स लेट मी टेल यू हाउ आई मेट योर ग्रैंडमदर, यानी कि हाउ यू वर बॉर्न। And there's rock legend Geddy Lee from Rush, fashion guru Tim Gunn and Star Trek star Will Wheaton. Sports squad bhi kafi solid hai. Dak Prescott, quarterback for the Dallas Cowboys and Formula One champion Fernando Alonso. So birthday cake ke saath saath Formula One speed bhi rakhna banta hai, candles blow karne mein. Get it? And then we've got our desi birthday twins, Sanjay Dutt, Anoop Jalota, legendary industrial and aviator JRD Tata. Ki aaj birth anniversary है एंड साथ साथ में स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की भी। सो बर्थडे बेबीज, टुडे इज योर डे, केक खाओ, पिक्चर्स लो और कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करो, कैलोरीज को और एज को भूल जाओ एंड आज ढेर सारी खुशियां बांटो, ढेर सारी खुशियां बटोरो। एंड यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स टू सेंड मी योर बर्थडे शाउट आउट फॉर योर सेल्फ और योर फ्रेंड्स बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
9: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: This October,
13: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba and one-of-a-kind fireworks. On October 3rd at Kennedy Park, Sayreville, from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
14: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
15: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
14: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
16: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
14: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai. Ek hi hota hai. जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
17: ए भाई, भाई बहुत खुश लग रहा है भाई, बात क्या है। Hey,

0: भाई रिवर्स में क्या कुछ स्टोरी सुना रहा है, स्टार्टिंग से सुना ना। भाभी को घुमाने के लिए किधर लेके गया?
1: अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में ले गया, किस में?
0: किस में भाई?
1: अरे किसिंग कार में यार।
0: ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना।

0: आज ड्राइवर ने मिरर में देखा नहीं ना, कैसा मैनेज किया?
1: अरे ड्राइवर को मैंने 100 का नोट दिखाया, उसको सूसू करने का आइडिया तब आया।
0: अरे भाई तू तो जीनियस है, फिर क्या हुआ?
1: कभी चूमती इधर कभी चूमती उधर, अरे बोले मेरा मुन्ना इतने साल थे कि थर।
0: ऐसा हो गया भाई?

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब टाइम है गोल्ड रेट अपडेट का, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: RajJewels.com wishes happy गणेश चतुर्थी टू everyone। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,280, $4,280 पर ट्रे आउंस के साथ इस गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं RajJewels.com पे, जहां पे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड के थोड़े से रिड्यूस प्राइजेस का बेनिफिट ले सकते हैं और RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुना तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। बने रहो इंस्टा और एक्स पर भी। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन meets style।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na
1: vidva la burka. Milci, burka. Hello.
2: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
3: अरे बोल कौन रहा है
2: सर, ये वाला भेज दें बीप।
1: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
1: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दें सर, ये वाला बीप।
1: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: अरे बावले हो गए हो क्या?
2: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
1: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
1: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
1: अबे पागल ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
1: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट। सर ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
1: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
1: अबे ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
9: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
11: Inefficient,
12: very complex,
13: clumsy or
14: confusion ही confusion.
7: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
16: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
15: Wait, they can see us on Sunday?
16: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
17: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
17: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब मिर्ची पर वो टाइम आ चुका है जब तुम अपने स्टार्स के बारे में सुनते हो।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, वर्क का केओस थोड़ा सा काम होने वाला है, फोकस बेटर रहेगा, करियर में ग्रोथ का चांस है, बस शॉर्टकट्स मत लेना। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, होम और करियर आज एक ही रिमोट के लिए लड़ेंगे, क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज करो वरना ऑफिस भी अनहैप्पी और घर भी अनहैप्पी रहेगा। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, स्पीच कंट्रोल में रखो, ड्राइविंग में स्पेसिफिकली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और रैश मूव्स अवॉइड करो। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 23। कैंसर यानी कर्क राशि, मनी मैटर स्पॉटलाइट में है, शेयर्ड एक्सपेंसेस, डेट्स या किसी और के क्लेम्स को क्लियरली चेक करो, अजम्पशंस एक्सपेंसिव हो सकते हैं। लकी कलर इज एमरल्ड, लकी नंबर इज 8। लियो यानी कि सिंह राशि, क्लोज रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा टेंशन पॉसिबल है, बिग डिसीजन, स्लीप ऑन इट, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई जरूरी नहीं होता है। योर हाइनेस, लकी कलर इज गोल्ड, लकी नंबर इज 19। वर्गो यानी कन्या राशि, वर्क रूटीन और हेल्थ के बीच बैलेंस जरूरी है, थोड़ा सा पॉज लो, रिचार्ज करो, प्रोडक्टिविटी का मतलब 24/7 ऑनलाइन रहना नहीं होता है। लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 11। एंड दैट इज योर राशि जोन पार्ट 1। बाकी बची 6 राशियों को लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में, तब तक तुम ये मिर्चीदार बैंगर्स सुनो और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot. Teri mummy ki jai.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो देखते हैं राशि जोन 2 में आज क्या क्या पता चल रहा है।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, क्रिएटिविटी और रोमांस दोनों इंटरेस्टिंग जोन में है। इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, कभी कभी हार्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट जरूरी होता है। लकी कलर इज मजेंटा, लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, होम और प्रॉपर्टी मैटर्स में पॉजिटिव मूवमेंट, क्विक विन्स के पीछे मत भागो यार, लॉन्ग टर्म इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस करो। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 4। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, मनी प्लानिंग का टाइम है, थोड़ा सा सेव करो, प्रैक्टिकल लो, फ्यूचर यू को आज रिस्पॉन्सिबल यू डेफिनेटली थैंक यू करेगा। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 16। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, योर हार्ड वर्क इज गेटिंग नोटिस्ड, रिकॉग्निशन मिल सकती है, सो ओन योर अचीवमेंट्स, बस ह्यूमिलिटी को भी पैसेंजर सीट पर बैठाए रखो। लकी कलर इज मस्टर्ड, लकी नंबर इज 9। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, फुल मून तुम्हारी लीडरशिप एनर्जी को स्पॉटलाइट में ला रहा है, इनिशिएटिव्स लो, कॉन्फिडेंस दिखाओ, लोग एक्चुअली तुम्हारी लीड को फॉलो कर सकते हैं। लकी कलर इज सिल्वर, लकी नंबर इज 21। यानी कि मीन राशि, आज कंपैशन तुम्हारी सुपर पावर है, बस दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद को कस्टमर केयर क्यू में मत डाल देना, अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को इक्वल प्रायोरिटी दो। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 3। एंड दैट्स योर राशि जोन पार्ट 2, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: तू भी
2: आस। इधर
1: हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
3: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
4: इट्स हॉट। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीद

0: दे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट.
2: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
1: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
4: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
1: Releasing nationwide by Zee Studios.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: नवरात एकत स्पिरिट
9: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटोवे मा
8: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी
9: तारीख 18 मीना रोज 8म यज्ञ 19मी ए 9म यज्ञ अने 25मी ए शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी विजिट gayatricenter.org टुडे.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
11: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा.
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: साथ।
1: ओके बिफोर आई डिसअपियर एंड यू गेट बैक टू प्रिटेंडिंग यू आर एक्चुअली वर्किंग, एक यूपी अंकल ने वेदर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिटरली ऊपर तक पहुंचा दिया है इन इंडिया। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब रैपअप का टाइम आ चुका है। लेकिन जाने से पहले जल्दी से तुम्हें ये घटना बता देती हूँ। अपेरेंटली सूरज तिवारी नाम के एक बंदे ने, जो कि हरदोई उत्तर प्रदेश के हैं, एक कंप्लेंट फाइल की है ऑन द स्टेट्स ग्रीवियंस पोर्टल अगेंस्ट लॉर्ड इंद्र, या इंद्र जी के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट फाइल की है, आस्किंग द अथॉरिटीज टू यूज डिवाइन मींस टू स्टॉप द एक्सेसिव रेन। आई मीन व्हेन कस्टमर केयर डजंट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स यू एस्केलेट, बट दिस इज सम सीईओ लेवल एस्केलेशन। एंड ऑनेस्टली वैसे ऑन अ सीरियस नोट, रेन जो है वो काफी सीरियस हो गई फिलहाल यूपी में। रिकॉर्ड हुई है 98 मिलीमीटर की बरसात इन लास्ट 48 आवर्स विथ 56 डेथ्स, 46 इंजरीज एंड मोर देन 1020 हाउसेज डैमेज अक्रॉस 56 डिस्ट्रिक्ट्स। सो जोक्स असाइड, होपिंग द स्काईज काम डाउन एंड एवरीवन स्टे सेफ एंड जस्ट लाइक दैट मिर्ची मॉर्निंग्स इज रैपिंग अप। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी। तुम्हारा मॉर्निंग कम्यूट हो, चाय ब्रेक हो या फिर बॉस से बचने का मिशन हो, आई होप आई मेड इट अ लिटिल मोर फन एंड अ लॉट मोर मिर्चीदार। कैच मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मैसेज करना हो तो रिमेंबर 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। अब मैं चलती हूं, तो अपना ख्याल करो, तुम अपना काम करो एंड प्लीज इंद्रदेव जी को कंप्लेन भी करो क्योंकि न्यू जर्सी में भी काफी बरसात हुई है। अभी के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

कहते हैं कि दिल से चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये एक चीज नहीं हो रही है। मैं फोन छोड़ने की कोशिश करता हूँ रात को सोने से एक घंटे पहले। आई हैव रेड इट समवेयर कि रात को सोने से एक घंटे पहले तक फोन नहीं चलाना चाहिए तो अच्छी नींद आती है, इट इज गुड फॉर बॉडी।

बट इट इज नॉट हैपनिंग। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है और ये आई नो मेरे साथ साथ बहुत सारे और लोगों की भी प्रॉब्लम होगी, बट इन केस समहाउ If you have find a solution for this, then do let me know. Instagram पर हूँ मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH is the spelling of my name. Come there, let's talk about it, because ये एक चीज दिल से चाहने के बाद भी नहीं हो रही है। फिलहाल दिल से मैं जो जो चाहता हूँ उसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं। गानों के उस पार आ रहा हूँ, only on मिर्ची, मेरा नाम क्रिश है, it's all.

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर ये तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा।
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना, पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
1: हाँ हाँ।
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर।

0: ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
0: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, कभी लेकिन ना, मैं समझ रही हूँ।
0: हाँ, क्या समझ
1: रही हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
0: डॉक्टर सुमिता।
1: हाँ जी,
2: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
1: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
2: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
6: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
11: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
12: मैं बेटे के लिए justice चाहिए।
13: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
11: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
14: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
11: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
14: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
11: Releasing nationwide by Zee Studios.
15: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
18: This October,
19: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba and one-of-a-kind fireworks. On October 3rd at Kennedy Park, Sayreville, from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
20: Tera kya hoga, Kalia?
21: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
20: Ab mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.

23 अक्टूबर को एक बिल्कुल नया फिनोमेना थिएटर्स में रिलीज होने वाला है। बिल्कुल नया ही है, इसका नाम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। द फिनोमेना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड पहला प्यार दूसरी बार। दिस इज अ न्यू मूवी बाय अगेन लव रंजन, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। ये वही हैं जिन्होंने प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी ये सारी मूवीज रिलीज करी थी, उसके बाद तू झूठी मैं मक्कार। इसके बाद अब प्यार का पंचनामा स्टाइल में ही ये 6 न्यू कमर्स को लेकर आए हैं। और अगर इसका ट्रेलर आप देखेंगे जो कि कल रिलीज हुआ है, इसका ट्रेलर देखने में भी आपको सेम वाइब आएगी कि सेम प्रोडक्ट की नई पैकेजिंग है एंड सेम काइंड ऑफ पंचेस, सेम काइंड ऑफ दोस्ती, सेम काइंड ऑफ प्यार। सो आप भी एक बार देखो और मुझे बताओ, दूसरी बार नहीं, पहली बार अगर देख लिया हो तो दूसरी बार नहीं बैठी, नहीं बात है ना, कोई बात नहीं। इस मूवी का नाम भी नहीं बैठा, पहला प्यार दूसरी बार, कोई नहीं। आप देख के बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मिर्ची क्रिश के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। मुझे तो एग्जैक्टली सेम लगा, तो मुझे ये लगेगा कि मैं वही मूवीज को दोबारा देख रहा हूं। बाकी आप बताना। दिस इज मिर्ची, इट्स आउट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरामा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट.
7: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
6: दृश्यम द कंक्लूजन, स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत एंड मेनी अदर्स.
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
6: The end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion. In cinema, 2nd October.
9: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
6: Released by Zee Studios nationwide.
10: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
11: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
10: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
12: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है.
13: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू.
12: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट.
13: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम. एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा.
14: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
15: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
14: Wait, they can see us on Sunday?
15: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
16: रिसेंटली OTT पर एक सीरीज आई थी जिसका नाम है मुसाफिर कैफे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक्ड इट आल्सो. और अगर आप भी मोस्ट ऑफ द पीपल हो, देन कांग्रेचुलेशंस, आपके लिए एक अच्छी खबर है. मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है. इनफैक्ट अगर आपको पहाड़ पसंद है तो आपके लिए डबल अच्छी खबर है. विक्रांत मैसी, जो कि इस सीरीज में लीड एक्टर थे, उन्होंने ये अनाउंस करा कुछ टाइम पहले कि वो खुद के मुसाफिर कैफेज खोल रहे हैं. यस, दिस इज ट्रू.
17: मिर्ची टॉप टॉप टॉप टॉप ट्रेंडिंग.
16: ये कैफेज एक हिमाचल में होगा, एक उत्तराखंड में होगा. दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं ऑलरेडी. ये प्रोजेक्ट जो है वो उनके खुद की प्रोडक्शन कंपनी होममेड स्टोरी से टाइड अप है. ये कैफेज का जो लुक होगा वो रिक्रिएट करेगा एग्जैक्टली वही जो आपने सीरीज में देखा, रस्टिक सा, कोजी सा, एकदम फिक्शनल जैसे कैफे हमने देखा था. यहाँ पे हर लोकेशन में, यानी कि इन दोनों कैफेज में 20 रूम्स ईच होंगे, जहां पे आर्टिस्ट आए, रहें, जो भी उनका काम करना है करें. बेसिकली अगर आप वो स्लो वेकेशन पसंद करते हो ना, कि पहाड़ों में जाएं, कुछ दिन रह कर आए, वहीं से काम कर लेंगे, देन दिस इज द वन फॉर यू. एंड आई एम वेरी हैप्पी. ये तो आई थिंक सबसे पहले जो लोग एक्सप्लोर करेंगे उनमें से मैं भी होने वाला हूँ. बट आई वुड लव इट. इनफैक्ट यू शुड ऑल्सो गो. बाकी अब कुछ बढ़िया से गाने सुनते हैं. ओनली ऑन मिर्ची, मेरा नाम क्रिश है. It's hot.
18: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरामा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
7: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
6: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत एंड मेनी अदर्स।
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
6: The end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion. In cinema, 2nd October.
9: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
6: Released by Zee Studios nationwide.
10: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
11: Plus, grooms के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islington.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Have you ever felt कि आपको आपके काम के प्रेशर की वजह से आपकी करेंट एज ऐसी लगने लगी है कि बहुत ज्यादा हो गई है? बेसिकली यू आर नॉट फीलिंग जैसा आपको फील करना चाहिए एट दिस एज। ऐसा आप ही के साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर राइट नाउ। और ऐसा कई बार ये भी होता है कि आपको जितना प्रेशर लेना चाहिए उससे ज्यादा आपके आसपास के लोग आपको प्रेशर दे देते हैं, कर भाई कर वरना कैसे जिएगा ये जीवन। लेकिन एक महिला जिन्होंने इंस्पायर कर दिया होगा काफी सारे लोगों को, 30 ईयर ओल्ड ये महिला यूके में रहती है। एक हाई पेइंग करियर था इनका एज अ क्रिमिनल लॉयर। शी यूज्ड टू अर्न अ लॉट एंड शी जस्ट लेफ्ट हर जॉब डॉग्स को वॉक कराने के लिए। नाउ शी अर्न्स 50,000 रुपीज इंडियन करेंसी के हिसाब से पर डे एंड शी इज वेरी हैप्पी। शी सेज कि अब मुझे लगता है कि मैं 30 साल की हूं, अदरवाइज मुझे लग रहा था मैं बहुत ज्यादा ईयर्स की हूं। भाई ये सब पढ़ने के बाद मैंने अपने डॉग की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, हम दोनों की आंखें मिली और फिर वो मुस्कुरा कर चला गया। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि डॉग्स भी मुस्कुरा सकते हैं अगर उनको सही में कोई चीज इंटरेस्टिंग लगे तो। उसको मेरा दुख इंटरेस्टिंग लगा यार, मैं भी कोशिश करूंगा। आई मीन वी कैन डू इट। अगर हमें उतना मटीरियलिज्म नहीं चाहिए ना तो हम भी अपनी जॉब छोड़ सकते हैं या नहीं, सोचना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा। अगर आपको कुछ बात करनी है इस बारे में देन इंस्टाग्राम पर हूं मिर्ची क्रिश के नाम से, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम। आज जो करते हैं बात, दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।
15: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के पांच का पंच में पांच ऐसी मिस्टीरियस थ्रिलर मूवीज जो देख के मजा आ जाए, बिकॉज एक्चुअली बॉलीवुड इज गुड एट इट. स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 5 आती है तलाश, द आंसर लाइज विद इन. 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग आमिर खान एंड करीना कपूर खान, डायरेक्टेड बाय रीमा कागती, जिसमें इंस्पेक्टर शेखावत और उनकी वाइफ के बेटे की डेथ हो चुकी है. वाइफ इज स्ट्रगलिंग जबकि इंस्पेक्टर खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है एक एक्टर की मिस्टीरियस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने में. मूवी का एंड इतना अनएक्सपेक्टेड है कि किसी ने भी सोचा ही नहीं था, एंड हेंस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज शोन बाय बॉलीवुड. सेकेंड यानी कि फोर्थ नंबर पर आती है तलवार मूवी, 2015 में आई, स्टारिंग इरफान खान, डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, बेस्ड ऑन द इन्फेमस डबल मर्डर केस ऑफ नोएडा. इस मूवी ने एग्जैक्टली वही दिखाया जो हुआ था, यानी एंड में केस आज तक अनसॉल्व्ड है, एनहेंस इस केस को बंद कर दिया गया था. लेकिन अनसॉल्व्ड क्यों है ये आपको मूवी देखकर समझ में आता है. प्लस हु डजंट वांट टू वॉच अ गुड इरफान खान मूवी एनीवेज यार, सो गो एंड वॉच इट इफ You have not watched it yet. इसके अलावा बाकी की तीन मूवीज गानों के उस पार आ रही हैं. इसके बीच में अगर आप भी कुछ मिस्ट्री थ्रिलर्स बताना चाहते हो बॉलीवुड में या गेस करना चाहते हो अगली थ्री मूवीज, then tell me. Instagram पर मिर्ची क्रिश, KRISH. This is मिर्ची, it's hot.

0: ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में, मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बताइए।
0: हाँ, तो आप अगर मेरे को 2 मिनट भी दे देंगे सर, मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
0: बस आपके ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे 2 मिनट के लिए मिलना है, बस 2 मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
0: सैटरडे 4 बजे सर, सैटरडे 4 बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
0: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
0: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
0: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
0: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
0: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
0: सर संडे कितने बजे सर, संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे
0: सर। संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
9: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
8: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल students and offering I-20 to eligible international students pursuing an F-1 student visa. Visit aimseducation.edu. Your healthcare future starts with AIMS.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बनाई हुई मिस्ट्री थ्रिलर्स के बारे में इन टुडेज पांच का पंच। मिर्ची सुन रहा आप, मेरा नाम क्रिश है। अभी तक इस लिस्ट में दो मूवीज के बारे में आपको बता चुका हूँ। नंबर पांच पर थी तलाश द आंसर लाइज विद इन और फोर्थ पर थी तलवार 2015 में आई इरफान खान मूवी। अब आते हैं नंबर थ्री पर, कहानी 2012 में आई ये मूवी स्टारिंग विद्या बालन डायरेक्टेड बाय सुजॉय घोष, जिसमें विद्या बालन प्लेड अ प्रेग्नेंट वुमन का रोल जो लंदन से कोलकाता अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढने जाती है। सब जगह डेड एंड दिखता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है? देखो वैसे तो ये मूवी काफी लोगों ने देखी हुई है, बट फॉर सम पीपल जिन्होंने नहीं देखी होगी आई ऑब्वियसली डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, सो गो एंड वॉच इट। फिर सेकंड पर आती है माय पर्सनल फेवरेट्स में से एक अंधाधुन 2018 में आई ये मूवी स्टारिंग आयुष्मान खुराना, तबू एंड राधिका आप्टे डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन। नाउ यू वांट टू मेक अ मास्टरपीस ऑफ अ मूवी, ब्रिंग सम ग्रेट एक्टर्स टुगेदर और फिर कमाल देखो। ये मूवी वही कमाल करती है। आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर विजुअली इम्पेयर्ड पियानो प्लेयर है, बट ही कैन एक्चुअली सी, और फिर वो एक वेब ऑफ मर्डर में फंसते ही जाते हैं। अगेन इस मूवी को स्पेशल बनाती है इस मूवी की जबरदस्त कास्ट। सो इन केस बाय चांस वंस इन अ रेयर मोमेंट्स आपने नहीं देखी है तो जरूर देखो, मजा आएगा। बाकी नंबर वन पे कौन सी मूवी है ये गेस करो, मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे बताओ। मिर्ची क्रिश के नाम से आई एम देयर, दिस इज मिर्ची इट्स हॉट।
1: बस

0: best running culture, values and Hindi language programs for students.
1: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.

0: आई थिंक मिस्ट्री थ्रिलर्स बॉलीवुड का वो जॉनरा है जो वो काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। इसीलिए आज की पांच का पंच में वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड के एपिक पांच ऐसी मूवीज जो मिस्ट्री थ्रिलर से भरी हुई हैं। एंड हमने अभी तक बात करी पांचवें नंबर पर तलाश दी आंसर लाइज विद इन के बारे में, फोर्थ पर आई तलवार, थर्ड पर कहानी, सेकंड पर अंधाधुन। अब नंबर वन बताने से पहले ऑफकोर्स मेरा एक स्पेशल मेंशन आएगा, ये वो मूवी है जो कि आज की डेट में कल्ट क्लासिक है, गुप्त द हिडन ट्रुथ 1997 में आई स्टारिंग बॉबी देओल उर्फ लॉर्ड बॉबी एंड काजोल, डायरेक्टेड बाय राजीव राय। साहिल यानी बॉबी देओल का कैरेक्टर अरेस्ट हो गया है फॉर मर्डरिंग हिज स्टेप फादर, बट ही हैज टू प्रूव दैट ही समहाउ इनोसेंट। आगे जो जो होता है और क्लाइमैक्स में जो रिवील होता है वो आई थिंक सबको पता है, बट दिस मूवी इज एज्ड लाइक अ फाइन वाइन बिकॉज अब ये टाइमलेस क्लासिक है, हेंस द स्पेशल मेंशन। एंड अब आते हैं नंबर वन पे जो कि मुझे पता था काफी लोग गेस कर लेंगे, ऑफकोर्स दृश्यम 2015 की ये मूवी स्टारिंग अजय देवगन, तबू एंड श्रिया सरन, डायरेक्टेड बाय निशिकांत कमत। वैसे तो ये 2013 की मलयालम मूवी दृश्यम का ही रीमेक है, लेकिन एक मूवी कितनी सक्सेसफुल है ये आपको तभी समझ में आ जाता है जब 11 साल बाद भी उसका थर्ड पार्ट आने वाला हो और उसका एक डायलॉग इतने साल बाद भी हम सबको याद हो। यस, हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, हेंस दिस मूवी डिजर्व्स द फर्स्ट स्पॉट। अगर मैं कोई बहुत बढ़िया मिस्ट्री थ्रिलर मिस कर रहा हूं देन डू टेल मी अबाउट इट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट ऑन एयर। मिर्ची क्रिश के नाम से आई एम ऑन इंस्टाग्राम, जाओ वहां पर बताओ। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम, दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है पता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी हंस। इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।

0: It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
4: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
5: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
6: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯੈਸ ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
9: ये मोह मोह के धागे।
10: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
11: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट। अक्टूबर 10th 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड mongobashi.sca.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
12: सो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड रिसेंटली, जब कैटरीना कैफ को ट्रोल किया गया। काफी सारे सेलिब्रिटीज उनके सपोर्ट में आए, जिसकी शुरुआत खुद भाई ने करी थी अपनी टी शर्ट उतार के इन वन ऑफ बिग बॉसेस एपिसोड्स। मिर्ची सुन रहा, मेरा नाम क्रिश है। लेकिन अभी रिसेंटली समीरा रेड्डी ने एक बड़ा अच्छा पोस्ट डाला एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। उसमें उन्होंने अपनी फोटोज और वीडियोज का मॉन्टाज डाला एंड शी रोट कि बॉडी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी हो, चाहे यंग टीन हो, चाहे एक न्यू मदर हो, आपको अपनी बॉडी से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ट्रोल्स तो देखो जो भी हैं कहते रहेंगे, उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो क्या ही होगा। यही मैं बोल रहा हूँ, ट्रोल आर सो बैड। और इसी के साथ साथ एक पोस्ट ये भी मैंने देखा ना, आई हैव टू क्रॉस चेक इट, कि विवेक ओबरॉय ने भी शायद इसके बारे में बात करी है कि भाई सही कह रहे हैं, ट्रोलिंग एक बुरी चीज़ है। विवेक ओबरॉय तो अच्छी बात है, सपोर्ट करते हैं भाई का। इट्स रियली गुड टू सी दैट। बट एनीवेज, द पोस्ट वाज गुड बाय समीरा रेड्डी। हैव यू सीन इट? गो एंड चेक इट आउट यार। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। इट्स हॉट।
13: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची।
14: इट्स

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार श्रोता साथियों, आपका स्वागत है मिर्ची पर लता फॉरएवर विद जीतूराज। इस बड़े ही विशिष्ट संस्करण में कोकिलकंठी स्वर कोकिला दीदी लता मंगेशकर की एक और वर्षगांठ है और उनके इस बर्थडे के मौके पर मिर्ची के प्लेटफॉर्म पर हम ये विशिष्ट संस्करण आपकी खदमत में लेकर आए हैं। इसमें अलग अलग अनुभव स्वानुभव हिंदुस्तानी सिनेमा की बातें और लता मंगेशकर की विशिष्ट बातें होंगी। पिछले कुछ सालों में जहां पर आरजे जीतू राज रेडियो के साथ संलग्न रहा, हिंदुस्तानी सिनेमा के कई कई लोगों के साथ साक्षात्कार करने के अवसर प्राप्त हुए हैं एंड इन्हीं के साथ कोकिल कंठी दीदी लता मंगेशकर के साथ भी कई बार साक्षात्कार हुए हैं। कई बार उनसे निजी तौर पर मुलाकातें हुई, कभी कभार मुंबई में एक बहुत प्रतिष्ठित सारे एशिया में जो सबसे बड़ा हॉल माना जाता है श्री षणमुखानंद हॉल, वहां पर उनसे बातचीत हुई थी। प्रभु कुंज जो दीदी लता मंगेशकर का घर है वहां पर एक हाथ दो बार दीदी ने निमंत्रण दिया था और कुछ बातें फोन पर हुई हैं। मगर लता मंगेशकर

0: आपके अनुभव, ये सब मिलकर ये शो होगा जिसे हम मिर्ची पर लता फॉरएवर कह रहे हैं। अगर हम आपके विचारधारा के साथ नहीं मिले तो हमें साक्षात आपसे मुआफी मांगने का हक दें। अगर कोई ख्याल गलत पड़े तो माफी दें, मगर उस ख्याल के साथ रुके नहीं। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी दे रहे हैं आपको, आप अपने ख्याल, आपका कोई एक दीदी लता मंगेशकर का गाया गया हुआ पसंदीदा गाना होगा वो भी भेजें। आपका अगर कोई अनुभव है जहां आपका साक्षात्कार हुआ था दीदी लता मंगेशकर के साथ, वो भी भेजें। हमारी इंस्टाग्राम पर आईडी है मिर्ची जीतू राज, MIRCHIJEETURAAJ। आए इस लता मंगेशकर के सुरों के पवित्र बहती हुई गंगा जमनी संस्कृति का अनुभव लें और आगे बढ़ें मिर्ची पर लता फॉरएवर विद जीतूराज। नमस्कार।
1: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉरएवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉरएवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉरएवर। सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट मिर्ची।
1: हेलो,
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: मैं एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा,
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
1: हाँ हाँ।
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
2: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज़, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सविता।
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरे ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा।
1: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Sweet के साथ only on मिर्ची It's hot
1: Yep again
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लायन मॉर्गेज The king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं आरके ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे
8: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
12: अब मिर्ची खा.
14: Radio Mirchi, it's hot.
15: सॉन्ग्स जो याद रहे forever, लेगेसी जो जिंदा रहे forever. मिर्ची पर सुनिए लता forever.
16: Forever.
15: सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर इट्स हॉट

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट
1: मिर्ची पर लता फॉर एवर सुन रहे हैं आप। नमस्कार ए हिंदुस्तान, हमारे आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ है। लता मंगेशकर को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तेरे में से जो न जानते उन्हें बताएं। जीतू राज, एक ऐसा मौका भी था जब जीतू राज लता मंगेशकर के तब मिला था जब हम लोग 98.3 मिर्ची के 10 साल पूर्ण कर चुके थे एंड षणमुखानंद हॉल नाम की एक जगह है मुंबई में जहां पर साफे के फूल जो महाराष्ट्र में बड़े प्रचलित है, जीतू राज को भी बड़े पसंद आते हैं, उन फूलों के पूरे ऐसे बिखराव में दीदी लता मंगेशकर लाल सोफे पर बैठी थी एंड मेरे को भीड़ भड़के के बीच में से जगह निकाल कर अंदर जाने का प्रयत्न करना था, जो मैंने किया एंड वहां पर जाकर दीदी लता मंगेशकर से बस दो ही सवाल पूछने का चांस मिला, एक सचिन तेंदुलकर के बारे में एंड दूसरा क्या, हाँ ये सुनिए ना टुकड़ा।
2: एंड अहोभाग्य जीतू राज के फाइनली मेरे को पायलगू करने को मिल रहा है। दीदी लता मंगेशकर के, दीदी कैसी हैं आप?
3: बस मैं ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से।
2: सचिन तेंदुलकर आपको मम्मी कहते हैं, माँ हैं आप उनकी, कैसे लगता है?
3: बहुत अच्छा लगता है और बहुत पहले उन्होंने मुझे कहा है ये और अभी वो बात सब लोगों को मालूम हुई है क्योंकि मैंने ही बताई वो, और मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझे इतना मानते हैं। वो एक हमारे भारत की शान है, इतना बड़ा वो प्लेयर है और इतना सज्जन लड़का है। कभी मैंने उनके मुंह से किसी की बुराई, कोई बुरा शब्द कभी नहीं सुना। एक दिन मैंने अचानक उनको एक जगह मिले वो, तो मैंने पूछा, किसी आदमी के लिए पूछा, मैंने कहा ये प्लेयर जो है ये आपके साथ कैसा बिहेव करता है, क्या है ये आदमी? प्लेयर नहीं था एक्चुअली, वो जो सिखाने आते है ना अपने यहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छे है, कभी कभी हो जाता है ऐसे तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कितना अच्छा उन्होंने उस बात को उलझ जाती बात वो सुलझाया, मतलब तो वो एक उस आदमी की शराफत का ये है कि वो कितना शरीफ है। और उनके पिताजी मेरे हृदयनाथ के दोस्त थे।
2: वाह वाह, दैट्स दीदी, पुनः सादर

0: चरण स्पर्श एक मैसेज रेडियो मिर्चीला जर आपके तरफ से मिलेगा रेडियो मिर्ची मुंबई को।
1: मैं क्या कहूँ, आप इतने मतलब पॉपुलर है, आपका मैंने शो भी देखा रेडियो मिर्ची का और मुझे बहुत खुशी हुई और आपके 10 साल पूरे हो रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत भगवान करे और तरक्की करे आप और दुनिया सुने और आप हमेशा खुश रहे।
0: दीदी थैंक यू सो मच, तुम्हाला सादर चरण स्पर्श।
1: मी तुम्हाला नमस्कार करते आणि माझ्या शुभेच्छा तुम्हाला देते।
2: लता ये नाम नहीं है, लता ये अध्यात्म है, लता ये संगीत है, लता ये आराधना है।
3: ये मिर्ची पर लता फॉरएवर सुन रहे हैं आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ लता मंगेशकर के बर्थडे, उनके जन्म दिवस पर ये हमारी टीम मिर्ची ने बनवाया हुआ एक तोहफा है जो आपके लिए है और वहाँ स्वर्ग में हमारी जो दीदी मंगेशकर बैठी हैं उन तक हमारा ये पैगाम भी पहुंचे। आप भी कोई एक पैगाम भेजें उनके नाम हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जो मिर्ची जीतूराज है, मिर्ची जीतूराज MIRCHIJEETURAAJ। ये बताना ना भूलिएगा कौन से शहर में सुन रहे हैं आप मिर्ची पर लता फॉरएवर विजीतुराज। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। हमारे
4: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉरएवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉरएवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉरएवर, फॉरएवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतूराज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। It's hot. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Inefficient,
4: very complex,
5: clumsy or
6: confusion ही confusion.
1: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
8: दिस अक्टूबर विटनेस द पीक ऑफ एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ प्रीमियर कम्युनिटी सेलिब्रेशन विद आर्टिस्ट्स लाइक जयश्री, स्पर्श शाह, नीनी आयरिस एंड डांस अकेडमीज लाइक बॉली मूव्स, शिवालिक, तारा आर्ट अकेडमी. एंजॉय फूड, गरबा एंड वन ऑफ अ काइंड फायरवर्क्स ऑन अक्टूबर 3rd एट कैनेडी पार्क, सेयरविल, फ्रॉम 3 to 9 PM. एंट्री एंड पार्किंग इज फ्री.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर. मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर. इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। It's hot.
1: नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉरएवर चल रहा है, यानी कुछ ऐसे अनुभव आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के, जिसमें लता के साथ की कुछ बातें हैं, उनके साथ के कुछ अनुभव है। और आए आगे बढ़ते हैं। हम में से कई लोगों को शायद जानकर आश्चर्य होगा कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के आगे जब दीदी लता मंगेशकर ने एज ए चाइल्ड ये गुजारिश करी थी कि उसे गाना है या अभिनय करना है, तो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ने कहा था, थाम बाड़ा नको। एंड दीदी लता मंगेशकर की बातें एंड उनके संपूर्ण इतिहास के सागर मंथन को मंथित करके चंद मोतियों को चूक कर जीतू राज तेरे खदमत में पेश करने का प्रयत्न करेगा। एंड ऑफ कोर्स ये अट्टहास होगा। अट्टहास ऐसे हिंदी शब्दों को कहते हैं जो फेलियर होता है, प्रयत्न होता है सक्सेसफुल होने का, वो हो नहीं पाएगा जीतू राज, क्योंकि दीदी लता मंगेशकर की बातों को बताते हुए कौन कामयाब हो पाएगा। ये दो तीन शब्द नहीं है, संगीत का संपूर्ण पुराण है। एंड वो सेलिंग किस तरह से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पहले नहीं चाहते थे, अचानक जब कोई एक नाटक था जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर ने बिठाया था, एंड उस नाटक का एक पात्र शायद जब नाटक का मंचन होने वाला था तब नहीं आया था, एंड दीदी लता मंगेशकर उन सारे रिहर्सल्स में हुआ करती, तो उन्होंने वो सारे जो नाटक संवाद थे वो पठित कर लिए थे। एंड जब वो पात्र नहीं आया था, उस पात्र के कपड़े पहनकर मेकअप पहनकर दीदी लता मंगेशकर रंगमंच पर चढ़ गई थी ताकि नाटक का मंचन रुक न पाए। एंड अचानक से विंग में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर बाबा आए एंड उन्होंने देखा कि ये क्या है। एंड वो देखने के बाद फिर वो आश्चर्यचकित हो गए और उसके बाद उन्होंने उन्हें अपनी शिष्या बना दिया, जो वैसे तो थी अब हो गई ऑफिशियली। एंड देन ऐसे से संगीत के इतिहास में वो संगीत सरस्वती जन्म ले रही थी जिन्हें आगे चलकर तू और मैं मिलकर कहते पद्म विभूषित भारत रत्न। गायन कोकिला संगीत सरस्वती प्रभु कुंज की माता भारतीय संगीत की महालक्ष्मी दीदी लता मंगेशकर, जिनके बारे में जीतू राज जितने भी शब्दों का उपयोग करे शब्द कम पड़ जाएंगे, भाषाएं अपूर्ण रह जाएंगी, संगीत की विधाएं रुक जाएंगी, सांसें थम जाएंगी, लता मंगेशकर ये नाम चलता रहेगा। मिर्ची पर लता फॉरएवर उनके वर्षगांठ पर एक और प्रयत्न के उनके यादों के कई कई जो फूल है उनमें से एक हाथ दो फूल जो हमें याद है वो आपकी खदमत में पेश कर रहे हैं। आपका ये रेडियो साथी जीतू राज, आप कौन से

0: घर में सुन रहे हैं और आपके क्या विचार है उससे हमें मालामाल करना न भूलें। हमारे इंस्टाग्राम पर आपके नाम के साथ हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है मिर्ची जीतूराज MIRCHIJEETURAAJ। नमस्कार, जय हिंद।
1: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
2: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता.
2: कौन है बता?
1: कोहली.
2: अरे तू भी आस. इधर हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता. तुम दोनों गग गोल्ड हो.
3: वो क्या होता है?
2: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
3: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम. कंग्रेचुलेशंस.
4: इट्स हॉट. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
7: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
6: Wait, they can see us on Sunday?
7: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन.
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, सिर्फ मिर्ची पर. इट्स हॉट.

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। It's hot.
1: नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉरएवर चल रहा है आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ, जहां पर भाव है, स्पर्श है, उम्मीद है कि वो एक गायिका जिनको हम सुर सरस्वती कहते हैं, उनके जन्म दिवस पर उनको अपनी तरह से उनके ही इंटरव्यू, उन्हीं के विचारों का तोहफा दें। आगे बढ़ते हैं। हमारी टीम मिर्ची ने लता मंगेशकर के नाम हैशटैग मिर्ची सलाम भेजते हुए ये जो खास शो तैयार किया है, इसमें अभी जीतूराज अपनी टीम के साथ मिलकर जो करने जा रहा है, ये अगर हम लोग न करें तो इस शो में बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। वो क्या है सुने।
2: हेलो
1: दीदी।
2: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार जीतूराज रेडियो मिर्ची मधुन।
2: हाँ नमस्कार, बोला कैसे आप?
1: सादर चरण स्पर्श सगळ्यात पहिले।
2: कैसे हैं आप?
1: धमाल। आपसे बात करते हैं तो कुछ और पवित्र और पावरफुल हो जाते हैं। दशहरा बद्दल काहीतरी सांगा ना। दशहरा नॉर्मली दीदी कैसे घर पे मनाती हैं?
2: नहीं, हमारे घर पे तो
1: दीदी
2: सिंपल मनाते हैं। आपको मालूम है वो आपटाचे पान अपन मनतो ना।
1: हाँ।
2: सोना दिया जाता है, घर में पूजा की जाती है और सब नए कपड़े वगैरह लाते हैं और सबको मिलते हैं। आज सब मिलना होता है ना लोगों का
1: जी,
2: लोग आके मिलते हैं।
1: एक्चुअली मला एक प्रश्न विचारायची पण हिम्मत होत नाही आहे, तरी विचारतो। सुना है कि दीदी के जो दो फेवरेट चीजें हैं उनमें एक तो क्रिकेट है और एक है हीरे और जवाहर खरीदना, तो दशहरे पे हीरे वगैरह खरीदने की प्रथा है, दीदी इस बार कुछ कर रही है ना?
2: देखिए मेरी माँ थी तो हमारे यहाँ दशहरे पे सोना खरीदा जाता था, मतलब सोना थोड़ा सा, ऐसे नहीं कोई 10 ग्राम ऐसे सोना, क्योंकि माँ कहती थी कि आज सोना खरीदना चाहिए,
1: शुभ
2: होता है। हम लोग तो सोना खरीदते थे और मुझे हीरे वगैरह पसंद है, पर वो मैं बार बार खरीदती नहीं हूँ, कभी कभार खरीदती।
1: चलो ठीक है। दीदी रेडियो मिर्ची पर जीतू राज का एक सपना है, आपकी इजाजत हो तो बताओ।
2: हाँ बताइए।
1: अब पुनः हृदयनाथ मंगेशकर ने फिर से कंपोज करना चाहिए, कुछ बंदिशें होनी चाहिए लेकिन के जैसी, एंड दीदी लता मंगेशकर ने फिर से पंडित हृदयनाथ की कुछ बंदिशें गानी चाहिए।
2: जरूर गाऊंगी मैं, जरूर उसको आपका ये मैसेज उस तक पहुंच जाएगा।
1: दीदी फिर से आपको हम सब की तरफ से दशहरे की शुभकामनाएं, यानी सादर चरण स्पर्श।
2: नमस्कार
1: दीदी। कोकिलकंठी सुर सरस्वती, संगीत की महारानी और स्वयं में विजय पताका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर कहीं नहीं जाती, लता मंगेशकर जैसे इतिहास, लता मंगेशकर जैसे पुराण, लता मंगेशकर जैसे आध्यात्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और इसलिए वो हैं तो जीतूराज है, वो है तो रेडियो है, वो है तो संगीत है, वो है तो भारत है। दीदी लता मंगेशकर के लिए टीम मिर्ची की तरफ से मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ये शो करना हर किसी को अच्छा लगेगा, ये शो सुनते हुए तेरे में से भी हर किसी को अच्छा लगा होगा, बट बिलीव मी हर कोई जो सुन रहा है, शायद जीतूराज अगर ये बात कहे तो चलेगा, कि हम में से कोई भी न चाहता होगा कि इस तरह का शो हमको करना पड़े, बट ये शो करते हुए हमारे टीम को ये रियलाइज हुआ कि ये शो करते हुए भी जो दीदी लता मंगेशकर के साथ की बातचीत है या जो दीदी लता मंगेशकर की जिंदगी की कुछ कहानियां तेरे साथ हम लोगों ने बांटी है, उनको बांटते हुए ऐसे लगा कि लता मंगेशकर फिर से हम लोगों को सबको एक अलग तरह की इंस्पिरेशन दे रही है, एक अलग तरह की ब्लेसिंग दे रही है, एंड इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ लता भी हमारे साथ रहेंगी, आप भी रहेंगे। ये मिर्ची पर लता फॉरएवर सुन रहे हैं आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ, लता मंगेशकर के बर्थडे, उनके जन्म दिवस पर ये हमारी टीम मिर्ची ने बनवाया हुआ एक तोहफा है जो आपके लिए है, और वहां स्वर्ग में हमारी जो दीदी मंगेशकर बैठी है उन तक हमारा ये पैगाम भी पहुंचे। आप भी कोई एक पैगाम भेजें उनके नाम हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जो मिर्ची जीतूराज है, मिर्ची जीतूराज MIRCHIJEETURAAJ। ये बताना ना भूलिएगा कौन से शहर में सुन रहे हैं आप मिर्ची पर लता फॉरएवर जीतूराज। नमस्कार, जय हिंद, ए हिंदुस्तान हमारे।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतूराज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं लता फॉरएवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर. इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉर एवर ये सुन रहे हैं। इस शो में आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ हैं। ये हमारे मिर्ची प्लेटफॉर्म का एक विशिष्ट प्रयत्न है लता की जन्म दिवस की जो सुंदर आभा है उसे अपने शब्दों, अपने वाक्यों और लता मंगेशकर के साथ की हुई बातचीत के कुछ टुकड़ों को आप पर न्योछावर करते हुए करने का। मिर्ची पर लता फॉरएवर आरजे जीतू राज आपके साथ है। नमस्कार। और एक अनुभव बताना चाहता हूं। जब लता मंगेशकर से सबसे पहली बार मिला था, वो मिलना नहीं था वास्तविक, लता मंगेशकर के साथ मिलने का प्रयत्न मात्र था और वो प्रयत्न ही रह गया। उसके बाद लता मंगेशकर से किस तरह से मिला वो बाद में बताऊंगा। इसमें ये सुने कि जब पहली बार जब मिला था तो कोई एक बहुत बड़ा मुंबई में उत्सव था, और उस उत्सव में तो वो जमाना तब था जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह नहीं था, एक्स नहीं था, स्नैपचैट नहीं थे, और हम जो रेडियो पर शोज करने वाले हैं या जो पत्रकार हैं या जो टेलीविजन पर शोज करते हैं, हम सब जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसे अमिताभ बच्चन कहें, शाहरुख खान कहें, सलमान कहें, सनी देओल कहें, शुभा मुद्गल कहें, जगजीत सिंह कहें, लता मंगेशकर, इनसे बहुत निजी, आशा भोसले कहें, इनसे बड़ा निजी राबता हुआ करता, निजी राबता यानी संबंध फोन लाइन पर हुआ करता था। तो लता मंगेशकर से मिलने के लिए उस समय जो पीआर मैनेजर्स होते थे वो पैपराजी से थोड़े अलग होते थे, पीआर मैनेजर से भी बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप हुआ करता। तो उस समय कोई एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें लता मंगेशकर से मिलने के लिए हमें आमंत्रित किया गया था, हम वहां पहुंचे भी थे, मगर उस समय टेलीविजन बहुत बड़ा था और हम रेडियो पर बस अपनी उंगलियों को स्पर्श कर रहे थे कि अभी रेडियो बड़ा होगा। सबसे पहली मुलाकात की बात कर रहा हूँ लता दीदी के साथ। एंड फिर वहां पर हमें आमंत्रित किया गया, हम अंदर गए, बहुत बड़ा हॉल था और बहुत सारे टेलीविजन के कैमराज हमारे सामने थे और हमारे हाथों में हमारी रेडियो मिर्ची की टीम ने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग मशीन दिया था, उसे उस समय आईसी रिकॉर्डर कहते थे, अभी इस इस्तेमाल में नहीं आता आईसी रिकॉर्डर। आज के जो आरजेज होंगे वो ये सुनते हुए शायद सोचेंगे कि आईसी रिकॉर्डर इस्तेमाल किया था आरजे जीतू राज ने। तो वो लेकर हम लता मंगेशकर के आगे गए थे और तब लता मंगेशकर की जो निजी टीम थी उनको लगा कि ये, और उम्र भी कम थी हमारी तो चेहरे की लाली अभी गई नहीं थी तो तभी बस रेडियो का शुभारंभ था मुंबई में, तो उनमें से किसी एक को लगा कि ये कोई उत्साही विद्यार्थी है जो बस यूं ही आया है यहाँ पर। उस समय सेलफोन इतने लोकप्रिय नहीं थे और हम लता की टीम से जब मिले थे तो उन्होंने तकरीबन हमें गेट आउट कह दिया था एक वो समय अब तो हम खफा हो गए थे और हमारे अंदर एक मथुरा का ऐसा व्यक्ति बसता है जो इन सब बातों को बहुत निजी तौर पर लेता है, तो हमारे अंदर का बसा हुआ मथुरा का जो व्यक्ति है वो थोड़ा क्रोधित हो गया, और हम कान्हा और राधा जी को बहुत पसंद करते हैं तो हमने कहा ये तो हमारी साथ बदसलूकी हो गई। तो हम वो जो बहुत बड़ा समारोह था जहां पर लता मंगेशकर बैठी थी, हम उस समारोह से तकरीबन सिर ऊंचा करके आंखों में रक्त रंजित अश्रुओं को बहाते हुए वहां से निकल पड़े थे। और उस समय हमारा लता मंगेशकर के साथ इंटरव्यू नहीं हुआ था, मगर उसी मजमे में एक हद ऐसे लोग थे जो हमको बतौर आरजे जीतूराज के जानने लग गए थे। उनको जब पता चला कि जीतूराज, चूंकि लता मंगेशकर की टीम ने उनके साथ शायद जरा सा दुर्व्यवहार किया है इसलिए इंटरव्यू किए बगैर ही निकल गए, शायद ये जो संदेश है वो स्वर सम्राज्ञी कोकिल कंठी लता मंगेशकर तक पहुंच गया था। आप मानेंगे नहीं,

0: यकीन विश्वास नहीं बैठेगा आज जब आपके आगे ये बात बता रहा हूँ उनके जन्म दिवस की ये सुंदर आभा के बीच। अगले दिन सुबह को हमारा लाइव शो चल रहा था, उस समय लैंडलाइन बहुत लोकप्रिय थी, आजकल नहीं है लैंडलाइन इतनी भी लोकप्रिय। एक फोन बजता है, हमारी टीम में से एक लड़की दौड़ते हुए आती है, उस समय जो हमारी फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने कहा लता मंगेशकर का फोन आया है। और हम वहीं निस्तब्ध खड़े हो गए हमारे लाइव शो के दरमियान। आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति जो अगले दिन लता मंगेशकर का इंटरव्यू करने से क्रोधित होकर भागकर आया था क्योंकि ऐसे लगा कि उनकी टीम ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था, उसके अगले दिन शो पर लैंडलाइन पर लता मंगेशकर का फोन आता है। उसके बाद हमने लता मंगेशकर से क्या बातें करी वो सब कुछ यहाँ नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको हमारी जब आत्मचरित्र हमारी ऑटोबायोग्राफी जब आएगी तब पता चलेगा। अभी आप इस शो का लुत्फ उठाएं, मिर्ची पर लता फॉरएवर। आरजे जीतूराज सिर्फ प्रयत्न कर रहा है कि लता मंगेशकर के वर्षगांठ पर उनके साथ के हमारे जो अनुभव है वो समस्त मिर्ची प्लेटफॉर्म के हमारे श्रोता साथियों तक पहुंचे। उसके बाद लता मंगेशकर के साथ का हमारा रिश्ता कुछ और सशक्त हो गया, कुछ और भावनात्मक हो गया, कुछ और नजदीकी हो गया। साथ में रहें, आपके ख्याल हम तक पहुंचने चाहिए। इंस्टाग्राम पर हमारा इंस्टा आईडी मिर्ची जीतूराज है, मिर्ची पर लता फॉरएवर साथ में रहें। नमस्कार ए हिंदुस्तान हमारे।
1: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ। सर ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: बीप। अरे बोल कौन रहा है।
2: सर ये वाला भेजने बीप।
1: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेजने सर बीप।
1: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजने सर, ये वाला बीप।
1: अरे बावले हो गए हो क्या।
2: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
1: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो, भेज के तो देखो, ये वाला भेज दूं लास्ट।
1: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
1: दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
1: अबे पागल, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
1: अबे नहीं भेजना, एक बात समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट। अबे सर ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
1: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
1: अबे ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Nine Nights, One Divine Spirit.
8: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
7: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
8: Don't miss the Atham.

0: Yagya on the 18th, Naam Yagya on the 19th, and Sharad Purnima Garba on the 25th.
1: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
3: ये मोह मोह के धागे.
4: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है.
5: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है.
6: BBSCA presents Monali Thakur Live, एक exquisite evening, a spectacular concert. October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and bongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
10: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
9: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
11: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
12: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर.
13: लता फॉर एवर
12: सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर. इट्स हॉट.
13: इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स
1: हॉट। स्वर सम्राज्ञी कोकिल कंठी संगीत सरस्वती दीदी लता मंगेशकर के जन्म दिवस पर प्रयत्न है कि ये जो विशाल फुलवारी है उनके गानों की, उनके इतिहास की, उसमें से मिर्ची पर लता फॉरएवर में आपका ये रेडियो साथी आरजे जीतू राज यादों के कुछ फूल चुग कर एक माला बनवाए। ये माला की सुगंध आपको कैसे लग रही है आप हमें बताना, हम अपना इंस्टाग्राम आईडी जो है आपको देंगे। फिलहाल एक ऐसा समय भी आया था जब

0: किया था। अब मिर्ची पर लता फॉरएवर में ये ध्यान से सुनिए।
1: दीदी तुम चलते फंक्शन में मैं आया था एंड मस्ट कन्फेस कि आप अभी भी उतनी ही सुंदर उतनी ही स्लिम ट्रिम हेल्दी लगती हैं। प्लीज आपके सारे जो सुनने वाले फैंस हैं उन्हें बताएं दीदी किस तरह से अपने आप को ऐसे वेल रखती हैं।
2: ये इसका कोई ऐसे राज नहीं है, मतलब मैं जैसे हमेशा रहती थी वैसी हूँ। कोशिश सिर्फ ये करती हूँ कि वेट ना बढ़े मेरा, क्योंकि वेट बढ़ने से ना थोड़ा आदमी डल हो जाता है, काम करने को मन नहीं करता है। मतलब मेरा खाना पीना बहुत थोड़ा होता है और संभालती हूँ अपने आप को कि मैं एक खास एज के बाद आदमी का वेट वैसे ही बढ़ता है। वो नहीं बढ़े ये कोशिश करती रहती हूँ बस।
0: ये अपनी सेहत का राज बताती हुई जरा सी शर्माती जरा सी प्रबल, ऐसे लग रहा है कि अभी वो हमारे साथ ही हैं। जब आपकी खदमत में मिर्ची पर हमारी टीम ने हमसे कहा कि मिर्ची पर लता फॉरएवर करना है जीतूराज, और आपके गुलदस्ते में से जो चंद फूल हैं उनको आए फिर से नौछावर करते हैं समूचे हिंदुस्तान पर, तो हमारे हाथ फिर से थर थर कांपने लग गए। फिर से वैसे ही प्रतीत होने लग गया जैसे उस समय होता जब हम अपने शो के दरमियान लता मंगेशकर इस किंवदंती इस लेजेंड को फोन लगाते उनसे बातें करते। अभी ऐसे एहसास हो रहा है कि जैसे वो हमारे आसपास ही हैं। कहां जाने वाली है, वो अमर हैं, अमर थी अमर रहेंगी। आप में से कौन कौन ये शो कहां कहां सुन रहा है अपने विचारों से हमें अवगत कराएं ताकि हम मिर्ची पर कुछ और ऐसे प्रयत्न करें जो आपके दिलों की धड़कनों को कुछ और तेज कर जाए, जैसे हमारी दस्तक दे रहे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। हम ऐसे सोच रहे हैं कि लता हमारे आसपास ही कहीं पर हैं। अवश्य अपने विचार हमें भेजें हमारे इंस्टाग्राम पर मिर्ची पर लता फॉरएवर, हमारा इंस्टाग्राम आईडी लिख लें मिर्ची जीतूराज MIRCHIJEETURAJE। आपके विचारों से हमें अवगत कराएं, हमें कुछ और साहूकार करें तो हम ऐसे प्रयोजन बार बार करते रहेंगे। जैसे मिर्ची पर लता फॉरएवर हमारे मिर्ची प्लेटफॉर्म पर हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, साथ में रहिए।
3: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
4: I am not going to bed with you ever again.
3: But why? What did I do?
4: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
3: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
4: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
3: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
4: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
5: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची खा।
12: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट।
1: नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉरएवर सुन रहे हैं आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ। दीदी, लता मंगेशकर का जीवन अगर सिर्फ एक शब्दों में या एक शो में बताने का प्रयत्न करे तो नामुमकिन है। ये एक इतना बड़ा इतिहास है कि जिस पर कई कई किताबें लिखी गई हैं, कई कई गाने बनवाए गए हैं, कई कई कहानियां लिखी गई हैं, कई कई लोगों ने इस पर फिल्म बनवाने का प्रयत्न किया है। ऑफकोर्स नाकामयाब रहे होंगे, क्योंकि लता मंगेशकर नाम की ये जो इतनी बड़ी संस्था है, इस संस्था को तू और मैं क्या लिख पाएंगे। जीतूराज जब ये शब्द बोल रहा है तो ऐसे समझ रहा हूँ कि मेरे सामने माइक्रोफोन नहीं बट दीदी लता मंगेशकर है और उनके चरणों पर अपने माथे को केशर करके ये शब्दों को बोलने का प्रयत्न कर रहा है। दीदी लता मंगेशकर जब मुंबई आई थी, तेरे में से कई लोगों को जानकर बहुत अच्छा लगेगा, तब मुंबई में इतनी सारी रीग नहीं हुआ करती। अपना ये जो महालक्ष्मी मंदिर है फेडर रोड की तरफ वर्ली सी फेस के पास से, वो इतना कवर्ड नहीं हुआ करता। जैसे इन दिनों दीवारें बनी है वैसी नहीं थी। तो दीदी लता मंगेशकर मलाड, अंधेरी, जुहू, अपना यहाँ जेकब सर्कल के पास जो फेमस स्टूडियो है हमारे मिर्ची मुंबई के स्टूडियो के ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर रिकॉर्डिंग्स के लिए दौड़ा दौड़ी किया करती हैं। एक दिन में कई कई गाने रिकॉर्ड किया करती, तो बीच में कभी कभार उन्हें रिहर्सल भी किया करना पड़ती ना। तो ऐसे कभी कभार मैंने सुना है दीदी लता मंगेशकर को बोलते हुए, उनसे जब कई कई इंटरव्यूज किए हैं, कि जब रियाज करना होता तो ज्यादा जगह नहीं हुआ करती, एंड ट्रेन में दौड़ा दौड़ी करते हुए अगर थक जाती तो उस समय का जो महालक्ष्मी मंदिर था, उस महालक्ष्मी मंदिर के पीछे की तरफ जो दरिया बहता है वहां पर बड़े बड़े पत्थर हुआ करते, एंड दीदी लता मंगेशकर उन पत्थरों के बीच में जाकर उस पानी में बैठकर अपने आवाज से रियाज किया करती, ताकि अगले दिन जिस गाने की रिकॉर्डिंग हो उस रिकॉर्डिंग में उनके उच्चारण, उनका सुर, उनकी लय, उनका ताल सब सही हो। हम में से हम सब बहुत खुशकिस्मत नहीं है, हम अब सिर्फ महालक्ष्मी मंदिर के दीदार कर पाते हैं, उन पत्थरों को भी नहीं देख पाते जिन पत्थरों ने पवित्र हुआ चाहा था। लता मंगेशकर उन पर बैठकर अपने गानों का रियाज की हैं। हम में से कई कई लोग हैं जिनके कई कई फेवरेट्स होंगे लता मंगेशकर के। तो अगर इंस्टाग्राम पर है तो @मिर्चीजीतूराजन इंस्टाग्राम, या ट्विटर पर है तो @मिर्चीजीतूराजन ट्विटर, या लिंक्डइन पर अगर है तो JeeTuraj लिंक्डइन पर। तेरे दीदी लता मंगेशकर की कोई भी फेवरेट बात, कहानी या गाना भेजना अच्छा लगेगा। इज्जत बढ़ जाएगी कि हमारी टीम ने लता मंगेशकर के नाम ये जो शो समर्पित किया है उस पर तूने भी अपना सहभाग दिया। मिर्ची पर लता फॉरएवर जीतूराज।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉरएवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉरएवर। मिर्ची पर सुनिए लता फॉरएवर।

0: मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
5: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
6: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
4: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
4: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है।
4: Releasing nationwide by Zee Studios.
8: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
9: Plus, grooms के लिए royal sherwanis.
8: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islington.
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉरएवर, लता फॉरएवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
1: अभी जो बात हम दीदी लता मंगेशकर से पूछने वाले हैं या पूछ चुके थे, उसे आज के जो जेंजी हैं, अल्फा हैं या फिर मिलेनियल्स भी हैं, वो गौर से सुना। मिर्ची पर लता फॉरएवर चल रहा है। हमारी टीम मिर्ची ने विचार किया कि इस बार जब लता मंगेशकर की वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उनके बर्थडे, उनके सालगिरह पर एक अनूठा प्रयोजन करें। मिर्ची पर लता फॉरएवर आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ आप सुन रहे हैं, जहां पर लता मंगेशकर से हमारे संपूर्ण रेडियो जीवन में जो बातें करी हैं, कभी उनसे मिलकर, कभी रूबरू, कभी फोन पर, उनमें से कुछ अंश आपके खदमत में हम पूरी टीम ने मिलकर बहुत परिश्रम किया है शो को संचालित करने के लिए। ये उनके जन्मदिवस पर हमारी खास भेंट है। अब आरजे जीतूराज, आपके रेडियो साथी ने कहा कि जितने भी जेंजी हैं, जितने भी नौजवान हैं, ये अब जो बात आपको सुनाने जा रहे हैं उसे गौर से सुनना, कुछ पैगाम मिलेगा लता मंगेशकर से। जब हमने ये पूछा था,
2: दीदी को कैसे लगता होगा, दीदी मंजा आमचा सटी, हम जैसों के लिए दीदी एक संपूर्ण युग है संगीत का, लता मंगेशकर है, आणि आमच्या युगातले काही लोक तुम्हाला गाण्याची म्हणजे सूर वगैरे सांगत असेल की ये गाना ऐसे है वैसे, तो दीदी को कैसे लगता है?
3: मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा जब म्यूजिक डायरेक्टर के सामने, मतलब आज 65 साल से जब भी मैं म्यूजिक डायरेक्टर के सामने बैठती हूँ और गाना सीख, तो मैं ऐसे सीखती हूँ कि ये सामने जो बैठा है वो जो चाहते हैं वो गाना मेरा फर्ज है। क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर को प्रोड्यूसर लेते हैं और वो जो बनाते हैं वो अच्छा ही है। अगर कभी मुझे ऐसा लगे कि भाई यहाँ कुछ ऐसा करें या वैसा करें या कोई तान रखे, तो वो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि अगर ऐसा किया तो कैसा लगेगा, तो उन लोगों को अगर पसंद आ जाए तो वो होता है।
2: वाह वाह।
3: और ये मेरे साथ सबसे ज्यादा शंकर जयकिशन के साथ होता था। शंकर जयकिशन जब मेरे साथ रिकॉर्डिंग होती थी उनकी
2: जी,
3: तो वो मुझे कहते थे कि आपको अगर कुछ इसमें लगे कि यहाँ कोई हरकत कहनी है या कोई आलाप गाना है तो आप गाइए, हम आपको इतनी आजादी देते हैं, आप गाइए। तो गाते वक्त अच्छा भी लगता था।
2: नाउ आई नो, अभी मेरे को पता है कि क्यों शंकर जयकिशन के स्वरबद्ध किए हुए गाने इतने अच्छे हुए हैं।
3: शंकर जयकिशन, कभी कभी मदन भैया भी कहते थे कि आपको जो अच्छा लगे वो गाए, तुम गाओ लता, तुम्हें अच्छा लगे वो गाओ, ये कहा करते थे वो। और अगर मैं कोई उनके मतलब पसंद की कोई तान वगैरह कहूँ तो वो बहुत खुश हो जाते थे।
2: क्या बात है।
1: लता फॉरएवर, मिर्ची पर लता फॉरएवर आप सुन रहे हैं, लता मंगेशकर के वर्षगांठ पर जिन चीजों ने आपके इस रेडियो साथी आरजे जीतूराज को रेडियो के साथ जुड़े हुए रखा है, अब एक संपूर्ण युग हो गया, उसमें से कुछ कारण ऐसे हैं जैसे लता मंगेशकर के साथ की साक्षात्कार, ये बातचीत। कैसे लग रही है उनकी एक और वर्षगांठ को हम कुछ प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे आरजे जीतूराज ने कहा कि ये एक संपूर्ण फुलवारी है जिसमें कई कई फूल हैं जो सुगंधित हैं, महकते हैं, उनमें से कुछ चूग कर एक माला बनाकर अपने श्रोता साथियों पर हम न्यौछावर कर रहे हैं। हमारा ये छोटा सा प्रयत्न आप लोगों को कैसे लग रहा है, आप कौन से शहर में सुन रहे हैं ये अवश्य बताना इंस्टाग्राम पर हमें, मिर्ची पर लता फॉरएवर आपके ये रेडियो साथी आरजे जीतूराज। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपने लिखा होगा मिर्ची जीतूराज, MIRCHIJEETURAAJE। संपूर्ण हिंदुस्तान में जहां जहां हमारी आवाज पहुंच रही है, आपका लता का कोई फेवरेट गाना अगर हो या कोई किस्सा हो वो भी शेयर करें, हम उसे पढ़ना पसंद करेंगे, इससे हम कुछ और मालामाल हो जाएंगे। जैसे कहा, लता की वर्षगांठ पर ये मिर्ची की खास भेंट, मिर्ची पर लता फॉरएवर विद आरजे जीतूराज। नमस्कार, जय हिंद, हिंदुस्तान हमारे।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट।

0: मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi. It's hot.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉरएवर,
1: लता फॉरएवर
0: सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट।
2: तमाम हमारे श्रोता साथियों के लिए हम इस बार लता मंगेशकर की वर्षगांठ पर मिर्ची पर लता फॉरएवर, यानी ये सिर्फ मिर्ची के लिए ही सीमित नहीं है। आप आपके रेडियो साथी आरजे जीतूराज के साथ है। हम बता रहे थे कि ये सिर्फ मिर्ची के लिए सीमित नहीं है, संपूर्ण हिंदुस्तान में, संपूर्ण विश्व में, जहां जहां हिंदी संगीत चलता है वहां पर लता फॉरएवर कहा जा सकता है। लता के साथ के कई कई साक्षात्कार में एक ऐसा भी समय आया जब आपके इस मिर्ची साथी, रेडियो साथी जीतूराज ने लता मंगेशकर से, क्योंकि स्वयं हमको भी ये उधेड़बुन हमेशा रही थी कि क्या लता मंगेशकर ने सिर्फ हिंदुस्तानी भाषाओं में गाया है। ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की तकरीबन प्रत्येक भाषा में गाया है। तो गंगा जमनी संगम का दूसरा पर्यायवाचक नाम लता मंगेशकर है। फिर एक बार ऐसे भी आया जब हम स्वयं, हमारे पैरों तले की जमीन जो है वो मानो हिल गई थी। ऐसे क्या हुआ था, ये इंटरव्यू का टुकड़ा सुनिए।
3: सारी भाषाओं में तकरीबन गा चुकी हैं दीदी आप?
4: मैं हिंदुस्तानी भाषाओं में तो गा चुकी हूँ, पर मतलब हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में गाया है। मैंने 36 भाषाओं में गाया है।
3: बाप रे बाप, 36 भाषाओं में
4: कुछ? हाँ, और 36 भाषाओं में कुछ ऐसे हैं जो मैंने सिर्फ शो में गाया है। जैसे मैं रशिया गई थी तो रशियन में मैंने गाया था। मैं फिजी गई थी तो मैंने फिजी जुबान में गाया था। मैं सुरीनाम गई तो सुरीनामी जो थी उसने गाया था। फिर मैंने कनाडा में एक अंग्रेजी गाना गाया था। मतलब मैं जब अफ्रीका गई थी तो मैंने स्वाहिली में गाया था।
3: काय बापरे माझे, अशी म्हणजे मुरकुडी वळणार आहे आता। स्वाहिली में गाया आपने दीदी?
4: और स्वाहिली मेरा गाना बहुत पॉपुलर हुआ था और वो रिकॉर्ड में भी है। मतलब एक शो में मैंने गाया था तो वो गाना उन्होंने रिकॉर्ड करके, मतलब रिकॉर्ड किया था।
3: क्या बात है यार इस दीदी लता मंगेशकर दीदी, यू नो आपने मुंबई का एक संपूर्ण युग देखा है, म्हणजे कोल्हापुरावरून जेव्हा तुम्ही मुंबईला आले आणि मुंबई मध्ये, मी दीदी को पूछू की मुंबई की बारिशें जब आती हैं, बारिश पाऊस जेव्हा येतं, तो दीदी इन बारिशों को देखकर क्या सोचती है?
4: मुझे बारिश पसंद है, पर वो जो मतलब एक साल पहले जो हुई थी वो बारिश, मतलब वो तो कुछ कमाल ही हुआ था। पर मुझे बारिश वैसे ही बहुत अच्छी है। मैं सबसे ज्यादा घबरा जाती हूँ गर्मियों में। मुझे सर्दियों में अच्छा लगता है, बारिश में अच्छा लगता है।
3: बारिशों मध्ये जरा घरी एकट्या असलात, समजा जे कदाचित नसेल होत केव्हा, पण अगर अकेली है तो दीदी को क्या करना पसंद आएगा जब बहुत बारिश हो रही है बाहर?
4: मुझे भजिए खाना अच्छा लगता है।
3: दीदी आप पकाती हैं? सॉरी, म्हणजे तुम्हाला कधी काय जेवण वगैरे करायची कला वगैरे मैं कधी केलं?
4: मी सरपत फार छान करते।
3: व्हाट इज योर फेवरेट डिशेस दीदी, क्या पकाती है मस्त?
4: मैं मराठी स्टाइल का तो मैं सब पका सकती हूँ, और नॉनवेज में मैं मटन अच्छा बनाती हूँ, मैं पसंदा बनाती हूँ, मैं चिकन बनाती हूँ, मुझे सब आता है।
3: हाउ स्वीट, दीदी के हाथ का।
4: मैं पूरण पोली भी अच्छी बनाती हूँ।
3: पूरण पोली बनाते तुम्ही?
4: यस, मला माझ्या आजीने शिकवलं होतं।
2: यह हंसी अब सिर्फ यादों का खजाना है। इसे गुनगुनाते हंसी के साथ मिर्ची पर लता फॉरएवर किया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा है ये अनुभव बिल्कुल निराला। आपके लिए इस शो को मिक्स करते हुए मेरे अंदर जो लता के सुर बसे हैं वो पुनः जागृत हो गए। आप लोगों को कैसे लगा अवश्य बताना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। मगर एक ख्याल है जो यहाँ कहे बगैर हर कलाकार ये शेर कभी ना कभी बोलता होगा जो दीदी ने कहीं पर गाकर छोड़ा है, कि मेरे तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, देख ले सब आकर मुझे। एक जमाना था जब अभी आपका ये जो रेडियो साथी है जीतूराज, मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था करीब 25-30 सालों तक।

0: जानता नहीं था कि मैं कैसे दिखता हूँ, फिर हमारी टीम ने कहा कि आपको चेहरा दिखा देना चाहिए, तो अब लोग बाग इंस्टाग्राम वगैरह पर मेरा चेहरा देख सकते हैं। मगर उस समय मेरे को इस बात से बड़ी त्रासदी होती थी कि मेरा चेहरा दिखाना क्यों आवश्यक है। और तब दीदी का गाया हुआ ये शेर मेरे को बड़ा प्रोत्साहित करता कि मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, देख ले सब आकर मुझे, मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, देख ले सब आकर मुझे, मैं कोई तमाशा तो नहीं। मगर हर कलाकार एक तरह से तमाशा ही होता है। मिर्ची पर लता मंगेशकर की वर्षगांठ पर ये हमारी एक अदनासी कोशिश मिर्ची पर लता फॉरएवर, आपको कैसे लगा अवश्य बताना, और ऐसे प्रयोजन हम करते रहेंगे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है मिर्ची जीतूराज, MIRCHIJEETURAAJ। भेजना कौन से शहर में सुन रहे हैं अवश्य बताना हमारे इंस्टाग्राम के आईडी पर। एंड सुनने के लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद, सादर आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।
1: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर। इट्स हॉट, इट्स हॉट मिर्ची।
1: हेलो
2: मिस्टर कुमार।
1: या
2: हेलो सर, हाउ आर यू?
1: फाइन फाइन फाइन।
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बताओ।
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ।
2: सर थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताइए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
11: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Songs जो याद रहे forever, Legacy जो जिंदा रहे forever. मिर्ची पर सुनिए लता forever. Celebrating the melodious legacy of लता मंगेशकर जीतू राज के साथ मिर्ची पर. It's hot.

0: Lata Forever celebrating the melodious legacy of Lata Mangeshkar, Jitu Raj ke saath, sirf Mirchi par. It's hot.
1: मिर्ची पर लता फॉरएवर, लता मंगेशकर सर सम्राज्ञी कोकिल कंठी सरस्वती, लता मंगेशकर के वर्षगांठ पर टीम मिर्ची का ये विशिष्ट प्रयोजन है जहां पर हम मिर्ची पर लता फॉरएवर कर रहे हैं। आरजी जीतूराज को ये जिम्मा हमारी टीम मिर्ची ने देकर हमारी इज्जत अफजाई करी है, जहां पर हम लता मंगेशकर के साथ के कुछ निजी अनुभवों की बात कर रहे हैं, कुछ उनके साथ हमारे जो साक्षात्कार हैं, इंटरव्यू हैं, उनके कुछ पीसेस, कुछ टुकड़े आपके खदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयत्न पसंद आ रहा है। मिर्ची पर लता फॉरएवर में एक दिन ऐसे भी था जब हमें याद है, हम हमारे लाइव शो में, मुंबई में हम लाइव शो करते हैं, अब लाइव शो में बहुत बिजी थे और उस व्यस्तता में हमें पता चला, हम कुछ दिनों से लता मंगेशकर से बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे थे, कोई एक विशिष्ट प्रयोजन था और अचानक से हमें फोन आया था लता मंगेशकर की टीम से कि आज लता दीदी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, और फिर कुछ हो गया जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए थे। तो हमने दीदी को नम्र विनती की कि दीदी हम फोन पर आपसे बात करें तो चलेगा क्या? वो लता थी, वो कभी भी ना नहीं कहती थी। हमारा पहला जो उनके साथ का किस्सा था जो हम बता चुके हैं, उसके बाद जब जब हमने इंटरव्यू के लिए फोन किया या उनके साक्षात्कार के लिए उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलने के लिए गए, लता ने हमें इंटरव्यू दिया था, उनकी भलमनसाहत थी ये। तो एक सवाल उनसे हमने लिसनर्स यानी हमारे जो श्रोता साथी हैं मुंबई में, उनके हवाले से पूछा था। ये ध्यान से सुनना, ये उस समय का टुकड़ा है जब रीमिक्सिंग अपने उरूज पर पहुंचने लग गई थी और लता दीदी उस समय गाना थोड़ा कम कर दी थी। ठीक है, संपूर्ण विश्व में जो ये सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में जो सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना किस तरह से जब एक किंवदंती अर्थात एक लेजेंड बात करती हैं अपने गानों के बारे में और आज की पीढ़ी के बारे में जो संगीत को एक अलग दिशा निर्देश दे रहे हैं। मिर्ची पर लता फॉरएवर अब आरजी जीतूराज के साथ हैं, सुने।
2: मैंने पिछली बार आपका इंटरव्यू किया था, उसके बाद ये सवाल आए हैं, तो उसमें से एक सवाल कि दीदी लता मंगेशकर फिर से हिंदी फिल्मों में कब गा रही है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है?
3: नहीं, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ तय नहीं किया है कि नहीं गाऊंगी, और ऐसा भी कुछ तय नहीं है कि कब गाऊंगी। जब कोई अच्छा मुझे लगेगा, ऐसी फिल्म लगेगी जिसमें सब गाने हैं मेरे, तो मैं गाऊंगी।
2: भाई इन दिनों जो कहीं आपके गाने, पॉपुलर गाने रीमिक्स होते हैं, दीदी को इन पर गुस्सा नहीं आता? कहाँ लता की आवाज और कहाँ ये आजकल रीमिक्स करके गाए हुए गाने?
3: नहीं, गुस्सा क्या आएगा, पर उनके लिए मुझे एक तरह से दया आती है कि उनके लिए कोई नई चीज तो नहीं ना गाते, वही पुरानी चीजें हमने जो गा के रखी है वही गाते हैं, तो उनका नाम उसमें क्या हुआ?
2: क्या बात है।
1: तो एक तरह से देखा, ये मिर्ची पर लता फॉरएवर में लता की वर्षगांठ पर एक प्रयत्न है फिर से लता को आपकी खदमत में। वो जब बात करती, उनका लहजा, उनका अंदाज़े बयां, वो आपके खदमत में हमारी टीम ने लाने का प्रयत्न किया है आरजी जीतूराज के कंधों पर। ये बहुत बड़ा जिम्मा सौंपा है, उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा है। इस जवाब में देखा उन्होंने कैसे जो गानों का रिमिक्स हो रहा है उसके बारे में कहा कि फिर जो काम कर रहे हैं वो कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर रहे। अब अच्छा है आज जब आप ये शो सुन रहे हैं तब कहीं कहीं ओरिजिनल गाने आ रहे हैं, बस मगर न तो आशा है हमारे साथ, न तो लता है हमारे साथ। आप में से जो संपूर्ण हिंदुस्तान में ये शो सुन रहे हैं उनको मैं बताऊं कि मैंने अजय अतुल, जो आजकल के दौर के सबसे कामयाब मौसीकारों में से एक है, मैंने अपने मुंबई के रेडियो शो पर कहा था कि अजय अतुल की जिंदगी की सबसे बड़ी हार ये है जो हमेशा रहेगी, और मैंने ये तब कहा था जब आशा और लता जिंदा थी कि उन्होंने आशा भोसले और लता मंगेशकर से गाने गंवा लेने चाहिए, नहीं गंवाए। अब अजय अतुल कितना भी संगीत करें, एक तो खला हमेशा रहेगी कि वो आशा और लता से गंवा नहीं पाए। आपकी राय, आपके विचार हमें अवश्य भेजना हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। मिर्ची जीतूराज हमारी आईडी है MIRCHIJEETURAJ। मिर्ची पर लता फॉरएवर चल रहा है, उनके जन्मदिवस पर ये टीम मिर्ची का प्रयत्न है उन्हें फिर से हमारी खदमत में वैसे ही प्रस्तुत करें जैसे वो थी, जैसे वो हैं, जैसे वो रहेंगी। ये ना भूलें कौन से शहर में सुन रही है हमें बताना। मिर्ची पर लता फॉरएवर आपके रेडियो साथी आरजी जीतूराज के साथ। नमस्कार, जय हिंद, ऐ हिंदोस्तां हमारे।
0: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉरएवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉरएवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉरएवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतूराज के साथ मिर्ची पर। It's hot.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर, लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर. It's hot. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
4: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
3: Wait, they can see us on Sunday?
4: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
5: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
6: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
7: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
5: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat, and many others.
8: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
5: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
8: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
5: Released by Z Studios nationwide.
9: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स. आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी.
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
0: Songs जो याद रहे forever, legacy जो जिंदा रहे forever. मिर्ची पर सुनिए लता forever.
14: Forever.
0: Celebrating the melodious legacy of Lata Mangeshkar, Jitu Raj ke saath, Mirchi par, it's hot.
14: It's hot.

0: आप सुन रहे हैं लता फॉर एवर सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ सिर्फ मिर्ची पर इट्स हॉट।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मिर्ची पर लता फॉरएवर चल रहा है आपके रेडियो साथी आरजे जीतू राज के साथ, जहां पर भाव है, स्पर्श है, उम्मीद है कि वो एक गायिका जिनको हम सुर सरस्वती कहते हैं, उनके जन्म दिवस पर उनको अपनी तरह से उनके ही इंटरव्यू, उन्हीं के विचारों का तोहफा दें। आगे बढ़ते हैं हम दीदी लता मंगेशकर की बातें करते हुए। जीतू राज अपने स्वयं के मिर्ची के लाइब्रेरी से कुछ ऐसे मोती चूक कर लाएगा जिनका हार बनवाएगा और तेरे को इस हार से अलंकृत करेगा। कई बार ऐसे मौके मिले हैं जब दीदी से पर्सनली मिला था जीतू राज, उनसे फोन पर बातें की है, इंटरव्यू किया है, बस ऐसे ही जाकर उन्हें चरण स्पर्श किया है। इसी में से एक ऐसा टुकड़ा है दीदी के साथ के बातचीत का, जहां पर बड़े ही स्वाभाविक तौर से मदन मोहन के बेटे और मदन मोहन का जिक्र हो गया था, उसका ये टुकड़ा सुनिए। रेडियो मिर्ची पर मुंबई हमारी टेलीफोन लाइन को गद गद कर देती है जब भी हमारी लाइन पर होती है। हमारे साथ आदरणीय दीदी लता मंगेशकर है। दीदी पाए लागू चरण स्पर्श जीतू राज।
2: नमस्कार नमस्कार, कैसे आप?
1: धमाल धमाल, आप कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ, थैंक यू।
1: बाबरे, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने सुना है कि मदन मोहन साहब की कुछ पुरानी धुनें हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं सुनी, वो आप लोग फिर से लॉन्च कर रहे हैं किसी एल्बम में दीदी?
2: जी हाँ, उनके बेटे ने ये किया है, मतलब संजीव कोहली ने
1: जी,
2: और उनके गाने अभी वो है, और उसके साथ वीर ज़ारा का मेकिंग का वो उन्होंने वो भी बनाया है, मतलब वो वीर ज़ारा में था वो उन्होंने लिया है और दो रिकॉर्ड उसने मतलब बनाए हैं।
1: अरे बाप, यानी दीदी ये कई सालों पहले की रिकॉर्डिंग्स होंगी ना?
2: बहुत बहुत पुरानी है।
1: मैं अगर साल याद करने को कहूँ तो आएगा
2: मदन भैया को गए हुए कितने साल हुए, देखिए ना। उससे पहले उन्होंने जो बनाए थे वो गाने हैं।
1: बाप रे बाप।
2: और वो सरगम एचएमवी के पास नहीं थे, शायद उनके बेटे के पास थे तो उसने वो रिकॉर्ड बनाया है।
1: क्या
2: बहुत सुंदर मतलब सीडी बनी है, मेरे पास आई है वो।
1: अच्छा, आपको सुनने का चांस मिला था?
2: जी हाँ।
1: मैं उसमें से, यानी आपके जो तमाम फैंस हैं, करोड़ों हैं सारी दुनिया में जो इंटरव्यू सुनेंगे, उनको मैं कुछ अंदर की बात पूछूं, एल्बम बाहर आए हमारे लिए तो उसके पहले, तो दीदी क्या बताएंगी उस एल्बम की कुछ अंदर की बात?
2: नहीं, एल्बम में खास बात तो मुझे ये लगी कि एक तो पुराना है इसमें कोई शक नहीं, और मदन भैया का फिर से रिकॉर्ड आना एक बड़ी बात है इतने सालों बाद। उसमें रफी साहब के भी गाने हैं और शायद महेंद्र कपूर भी है, मैं हूँ, आशा है शायद, तो मतलब ये सारे ही लोग उसमें गाए हुए हैं, तो एक नई बात हो गई ना
1: दीदी।
2: और अच्छी बात हुई, आजकल जो चल रहा है म्यूजिक उसमें एक नया ये हुआ है।
1: You said it, आजकल जो चल रहा है उसमें ये नया ट्रेंड बहुत आवश्यक है। सुरों की कमी है दीदी, वो सुरों की कमी शायद आप लोग भरेंगे वापस।
2: हम लोग भरेंगे या नहीं मालूम नहीं, पर कम से कम थोड़ा अलग तो लगेगा।
1: क्या बात है। बहुत अच्छा। ये कहना जरूरी नहीं है जीतू राज का कि तूने गौर किया होगा किस तरह से जिस मदन भैया को बड़े प्यार से मदन भैया दीदी कहती हैं, उसका जिक्र इसमें आ गया। एंड हम में से कई कई लोग जो दीदी के चाहने वाले हैं, इस मदन भैया की कई कई कहानियां दीदी के थ्रू सुने हैं। मिर्ची पर दीदी लता मंगेशकर साष्टांग जीतू राज के सामने मूर्तिमंत

0: ते हैं मेरे माइक्रोफोन के रूप में, उन्होंने सादर चरण स्पर्श कहते हुए कह रहा हूं मिर्ची पर, इट इज लता मंगेशकर।
1: सॉन्ग्स जो याद रहे फॉर एवर, लेगेसी जो जिंदा रहे फॉर एवर, मिर्ची पर सुनिए लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर, जीतू राज के साथ मिर्ची पर, इट्स हॉट।

0: मिर्ची पर जारी रहेगा लता फॉर एवर, सेलिब्रेटिंग द मेलोडियस लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जीतू राज के साथ ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: नवरात एकत स्पिरिट
4: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे महा
3: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी.
4: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ 19 9 यज्ञ 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी. विजिट gayatricenter.org टुडे.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए इससे पहले के

0: प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरामा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
2: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
1: दृश्यम द कंक्लूजन, स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत एंड मेनी अदर्स।
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
1: द एंड वी बीन वेटिंग फॉर। दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2 अक्टूबर,
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
1: रिलीज्ड बाय जी स्टूडियोज नेशनवाइड।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
7: This October,
8: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Molly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab... मिर्ची का
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
12: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची।

दोस्तों, कभी नोटिस किया है, मंडे की मॉर्निंग और मंडे की इवनिंग दोनों बिल्कुल अलग लोग होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो इसीलिए क्योंकि मंडे मॉर्निंग में ना हम अलार्म से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, कॉफ़ी भी काम जैसी लगती है और इनबॉक्स देखकर तो लगता है कि अरे रे, वीकेंड इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। लेकिन मंडे की शाम तक पिक्चर थोड़ी सेटल हो जाती है, मीटिंग्स हो चुकी होती है, ईमेल्स का शौक भी निकल चुका होता है और अब बस घर पहुँचने की रेस चल रही होती है। और मुझे ना इसीलिए मंडे इवनिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार ये वीकेंड और नए हफ्ते के बीच का वो प्यारा सा हैंडशेक होता है, एक रिमाइंडर होता है कि चलो एक और नया चैप्टर शुरू हो गया। तो आज ड्राइव थोड़ी आराम से कीजिए, प्लेलिस्ट थोड़ी लाउड रखिए और स्माइल करना मत भूलिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आज की मंडे की शाम को रिलैक्स करने के लिए आपका बॉलीवुड गो टू सॉन्ग कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा बॉलीवुड गो टू सॉन्ग ये रहा आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ। सर ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रिप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
2: बीप। अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
0: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दें सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या
3: सर, एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
2: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
2: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
0: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
0: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
0: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
0: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
0: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल मॉडल, ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पागल।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344. Hidda!

0: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
1: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: Beta, shaadi next week hai aur tumhara abhi paise bhejta hu, sirf dialogue hi hai.
5: अरे माँ अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
1: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है.
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

इतने सालों में बॉलीवुड के भी कितने सारे नए रूप देखने मिले हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स, कैसेट से स्ट्रीमिंग, यार बॉलीवुड बदलता गया लेकिन कुछ क्लासिक्स की वैल्यू कभी कम नहीं हुई। और किचन में भी कुछ फ्लेवर्स बिल्कुल ही वैसे ही टाइमलेस है। एक जमाना था जब घर में मसाला हाथों से घिसे जाते थे, प्यार से कूटे जाते थे, धीरे धीरे पीसे जाते थे। धनिया, मिर्च और मसालों की खुशबू किचन से निकल के पूरे घर में फैल जाती थी। और फिर वही चटनी टेबल पर आती और सिंपल सा समोसा, पकोड़ा, सैंडविच या पराठा सडनली कुछ और ही बन जाता था। लेकिन आज तो यार सिलबट्टा हर किचन में नहीं होगा, इतना टाइम भी शायद नहीं होगा, लेकिन वो चटकारा हमें अभी भी चाहिए। और उसी पुराने एहसास को आज के किचन तक लाते हैं दीप चटनी। आज ही नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ले आइए, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और क्लासिक्स की बात निकली है तो एक बॉलीवुड क्लासिक तो बनता है दोस्तों, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
9: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
10: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
9: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड

0: offering I-20 to eligible international students pursuing an F1 student visa. Visit aimseducation.edu. Your healthcare future starts with AIMS.
1: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Sham Sardar, let's do Nautanki, have a funky time.
8: मुझे तो बॉलीवुड की ये नई आदत बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, आजकल जब नई मूवीज रिलीज होती है ना, तो बॉलीवुड एक्साइटमेंट को थोड़ा थोड़ा करके सर्व करता है। कभी एक पोस्टर, कभी एक फर्स्ट लुक, कभी एक टीजर, और फिर आता है ट्रेलर। मतलब बॉलीवुड की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ही पता है ये लगती है कि कभी कभी फिल्म से ज्यादा मजा उसके इंतजार में करवाता है। बस एक पोस्टर आता है और व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं, एक लुक रिलीज होता है और सब डिटेक्टिव बन जाते हैं। कोई कहता है कि यार ये कैरेक्टर ना कुछ जरूर छुपा रहा है और भी कुछ मसालेदार होने वाला है, तो कोई म्यूजिक का वेट कर रहा होता है, कोई ट्रेलर का, और कोई सीधा रिलीज डेट कैलेंडर में मार्क कर चुका होता है। मतलब फिल्म आने से पहले ही उसके आसपास इतनी एक्साइटमेंट बन जाती है कि लगता है कि कहानी स्क्रीन पर शुरू होने से पहले ही ऑडियंस के दिमाग में शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ बॉलीवुड ही कर सकता है। मतलब 2 मिनट का ग्लिम्स और पूरा देश की इमेजिनेशन फुल स्पीड में दौड़ने लगती है। वैसे आप भी बताइए कि जब किसी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है, आप सबसे पहले किस चीज का वेट करते हो? उसके फर्स्ट लुक का, ट्रेलर का, या पहले गाने का? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम @mirchi siddhi siddhi। और चलिए इंतजार को थोड़ा छोटा करते हैं और सुनते हैं एक ऐसा बॉलीवुड गाना जिसका वेट कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
6: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स, दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस नाउ, वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
5: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
6: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे, द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स, ऑफरिंग सेम डे सिक केयर। वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंडिंग areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: This October, witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville from 3 to 9pm. Entry and parking is free.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
10: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
11: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
12: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
15: कभी कभी लगता है न्यूज सिर्फ हेडलाइंस नहीं, हमारी डेली लाइफ का मूड भी डिसाइड कर देती है। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और सुबह फोन उठाओ तो कोई ना कोई अपडेट जरूर मिल ही जाता है। मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर, डॉलर नीचे, इन्फ्लेशन की बात, इकोनॉमी का डिस्कशन, और हम सब 2 मिनट के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन ही जाते हैं। लेकिन इन सारी हेडलाइंस के बीच ना एक चीज कभी चेंज नहीं होती, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। उन्हें तो सिर्फ इतना पता होता है कि जब ज़रूरत हो तब सपोर्ट वक्त पर मिल जाना चाहिए, और इसीलिए जब बात हो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश में पैसे भेजने की, तो प्रोसेस भी सिंपल होनी चाहिए। टैप टैप सेंड के साथ भेजिए मनी इंस्टेंटली, ग्रेट एक्सचेंज रेट और जीरो ट्रांसफर फी के साथ, मतलब नो वेट, नो हैसल, बस सपोर्ट जब भी जरूरत हो। तो आज ही डाउनलोड कीजिए टैप टैप सेंड ऐप, सेंड मोर एंड स्पेंड लेस। तो चलिए सुनते एक गाना जो हर डिस्टेंस को थोड़ा छोटा कर ही देता है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's on.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na fiat bala burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात करा दिए।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा।
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना, पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
1: हाँ हाँ।
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज़, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सविता।
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरे ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही बेगात मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
1: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: Nine Nights, One Divine Spirit.
11: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
10: Join daily Garva, October 11th to 19th at 7 p.m.
11: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
10: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
12: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
13: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
12: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King.

0: Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is kallol.com. Or call 917-440-9266.
1: This October,
2: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris, and dance academies like Molly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba, and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville, from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
3: Beta, shaadi next week hai, aur tumhara abhi paise bhejta hu, sirf dialogue hi hai.
4: अरे माँ अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
6: श्याम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और आजकल न्यूज खोलो ना तो हर जगह एक ही वाइब है, चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन, मार्केट शिफ्ट. और नेचुरली जब इतना सब चेंज हो रहा हो तो नए होम बायर्स के माइंड में एक ही सवाल आता है कि क्या अभी सही टाइम है या वेट करना चाहिए. और ऐसे टाइम पे पैनिक नहीं, राइट गाइडेंस मैटर करता है, क्योंकि हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज भी होती है, बस उसे सही तरीके से कोई समझाने वाला चाहिए. कोई ऐसा चाहिए जो ऐसे सिचुएशन में भी बोले कि यार डोंट फियर, वी आर हियर. तो चलिए उसी के लिए बुलाते हैं बीश को फ्रॉम लायन मॉर्गेज. ओवर टू यू बीश.
7: गुड इवनिंग म्यूचुअल लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज. होप नॉरिस्टर हैज पास्ड आवर एरिया, इट डंप्ड इनफ रेन एंड टुडे द यूएस मार्केट स्लिप एज यूएस इरान टेंशन रीसर्फेस एंड मॉर्गेज रेट्स ऑन द राइज. रिमेंबर लिसनर्स, लायन मॉर्गेज ऑफर्स कन्वेंशनल लोन्स, FHA लोन्स. We also offer loan programs under LLC or bank statements, P&Ls. We strive to earn your complete satisfaction because your networking of your positive experience with Lion Mortgage to your friends, family, and co-workers will provide us a foundation for the future. Keep us in mind again. Lion Mortgage, your ultimate source of residential loans. Whether you're buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage. 732-339-3155. Lion Mortgage 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate 7.125%. 20-year fixed mortgage rate 7%. 15-year fixed mortgage rate 6.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Again, a good news that I would like to share with our listeners is that now again, lenders are aggressively lending on condominiums and townhouses. Only exception is structural damages. So if you're buying a condo, townhouse, please don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home or refinancing, Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
8: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
11: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
12: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
11: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
13: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
14: अब मिर्ची खा.
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

घर में चार लोग और चार अलग मूड्स हो तो ओटीटी चूज करना भी ना फैमिली मीटिंग बन जाती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और इस वीकेंड तो मीटिंग और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हिस्ट्री और एक्शन का मूड है तो द रिवॉल्यूशनरीज, जहाँ भुवन बम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह प्रजिता यंग फ्रीडम फाइटर्स की कहानी लेकर आ रहे हैं। क्राइम थ्रिलर चाहिए तो घमासान में अरशद वारसी और प्रतीक गांधी आमने सामने, और फैमिली के साथ कुछ हल्का फुल्का देखना है तो चुंबक में नीना गुप्ता, सुमित व्यास और देवन भोजानी के साथ कॉलोनी वाली कॉमेडी केओस लेकर रेडी रहने वाले हैं। मतलब यार एक स्क्रीन लेकिन मूड के हिसाब से तीन कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आप ओटीटी पर जॉनर चूज करते हो, स्टोरी देखते हो या कास्ट देखते ही प्ले का बटन दबा देते हो? जरूर बताना ऑन इंस्टाग्राम @rjmirchisiddhi. और वैसे वॉच लिस्ट तो आप संभाल ही लेंगे, प्ले लिस्ट हम संभाल लेते हैं। अगला बॉलीवुड गाना मिर्ची पर, ओनली फॉर यू, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
1: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
0: इसे ये नहीं पता।
1: कौन है बता?
0: कोहली।
1: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता। तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: वो क्या होता है?
1: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
6: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
10: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
15: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
17: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पेनिश डांस और रिदम पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पे होता है, ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी को देखकर ना दिल अगर हल्के से मुस्कुरा जाए, वो भी बिना परमिशन के, तभी तो लगता है कि यार ये फीलिंग ही अजब सी है। आज की शाम थोड़ी ड्रीमी है, बिल्कुल केके की अजब सी जैसे। यार केके की आवाज़ में वो सॉफ्टनेस थी जो पहली नज़र के शौक को ना पोइट्री बना देती थी। और विशाल शेखर ने ओम शांति ओम के इस गाने को डेलिबरेट बहुत ही मिनिमल रखा था, मतलब नो हैवी बीट्स, नो ड्रामा, ताकि सिर्फ फीलिंग बोल सके। और मजे की बात यह है कि फराह खान ने भी इस गाने के विजुअल्स को स्लो मोशन में शूट किया था, ताकि ऑडियंस को भी वही टाइम रुक जाने वाली फीलिंग मिले जो ओम को शांति प्रिया को देख के मिली थी। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपकी लाइफ का अजब सी मोमेंट कौन सा था, और इस एल्बम का वो कौन सा दूसरा गाना है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते है ओम शांति ओम के हिट एल्बम का वो हिट गाना जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Mirci, burga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना।

0: आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
0: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
0: सर संडे 3 बजे दिन में? सर मैं, सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे
2: सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं, वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा।
0: तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर
0: पहले अपने ही निकाल।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
8: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
9: नहीं बेटी के लिए जस्टिस चाहिए।
10: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
8: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
11: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
8: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
11: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
8: Releasing nationwide by Zee Studios.
12: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
14: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
14: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
15: ये मोह मोह के धागे।
16: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती हैं।
17: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है।
18: BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th, 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड मोंगोबाशी SCA.org. कॉन्टैक्ट 6503055624.
19: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
19: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
16: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
1: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
10: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
14: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और जी हां बात हो रही है एक ऐसे ही एल्बम की जिसका यार मतलब हर एक गाना इतना ज्यादा हिट था, चाहे वो गाना दर्द बयां करे या डिस्को। जी हां, मतलब दर्द हो या डिस्को हो, बॉलीवुड तो कहता है कि शर्ट उतारो और डांस करो, क्योंकि दर्द ए डिस्को ओम शांति ओम का सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक पॉप कल्चर मोमेंट था। सुखी जी ने जो ये बहुत ही पावरफुल वॉइस में गाना गाया था, और विशाल शेखर के पंपिंग बीट्स ने इसको ना जिम प्लेलिस्ट ही बना दिया था। वैसे मजे की बात तो यह है कि शाहरुख खान ने इस गाने के लिए 6 से 8 महीने हार्ड कोर ट्रेनिंग की थी, और शूटिंग के दिन सेट पर पूरी यूनिट शॉक्ड थी, क्योंकि फराह खान ने भी बोला था कि यह गाना

मतलब शाहरुख के कॉन्फिडेंस का और सिक्स पैक एब्स का सेलिब्रेशन था। और ऑनेस्टली तब से डिस्को भी दर्द भूल जाता है, और शाहरुख को जब हम इस गाने में इमेजिन करते हैं तो वी कांट टेक आर आइज ऑफ। वैसे दोस्तों आप भी बताना कि इस एल्बम का कौन सा वो हिट गाना है जो आपको बहुत पसंद है। फिलहाल बजाते हैं डिस्को में दर्द यानी दर्द दे डिस्को राइट ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
2: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: दिस फेस्टिव सीजन कलॉल ऑफ न्यू जर्सी प्रेजेंट्स टू मेस्मराइजिंग नाइट्स.
6: अक्टूबर 17th, द वॉइस बिहाइंड द फेमस बिल्लो रानी, रिचा शर्मा.
5: एंड अक्टूबर 18th, द वॉइस बिहाइंड बारिश, एश किंग. Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
7: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
11: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
12: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
13: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
11: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
14: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
11: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
14: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
11: Releasing nationwide by Z Studios.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
17: Listener MI, back to back gana sunega.
18: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
19: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो शोर नहीं मचाते, बस चुपके से दिल छू जाते हैं। मैं अगर कहूं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों का, वो सॉफ्ट मैजिक है जिसे कंपोज किया था विशाल शेखर ने अपने एल्बम ओम शांति ओम में। और इस गाने को ना एक टाइमलेस लव लेटर की तरह कंपोज किया गया है, मतलब ना ज़्यादा ट्रेंडी साउंड्स, बस एक बहुत ही खूबसूरत सी मेलेडी। और मज़े की बात तो ये है कि सोनू निगम जी ने कहा था कि ये वो गाना होगा जो उनके करियर का ना वन ऑफ द मोस्ट जेंटल सॉन्ग्स कहा जाएगा, और शायद इसीलिए इस गाने को सुनते ही ना शाम थोड़ी और रोमांटिक हो जाती है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा वो दूसरा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको सुपर डुपर हिट लगता है, टेल मी ऑन इंस्टा। और फिलहाल बजाते हैं मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, और फ्रॉम द ब्यूटिफुल एल्बम ओम शांति ओम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
10: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए।
11: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
9: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
12: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
9: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
12: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
9: Releasing nationwide by Zee Studios.
13: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
0: Plus, grooms के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Hislin.
0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

की टाइम। एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और अगर किसी म्यूजिक कंपोजर को एक चैलेंज दे कि यार एक ऐसा गाना बनाओ जिसमें पूरा बॉलीवुड एक ही फ्रेम में नजर आए, तो ऐसे जो म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और डिलीवर भी किया, वो थे हमारे ओम शांति ओम के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर। जी हाँ, क्योंकि यार उन्होंने बनाया हुआ दीवानगी दीवानगी सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक बॉलीवुड रियूनियन था। शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सबकी आवाज एक ही सेलिब्रेशन में। और मजे की बात तो यह है कि यार 30 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स ने सिर्फ इस गाने के लिए अपने स्केड्यूल्स एडजस्ट किए थे, और शूट के टाइम भी यार किसी वेडिंग रिसेप्शन जैसा ही लग रहा था। वैसे तो विशाल शेखर ने इस गाने को एक्स्ट्रा पेपी रखा था ताकि हर स्टार एंट्री धमाकेदार ही लगे, और हर स्टार एंट्री के जो कैमियोज थे उसके लिए भी काफी अलग अलग म्यूजिक ट्यून्स थे, जिससे यार समझ आ जाए कि कौन सा स्टार एंटर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये गाना उतना ही मजेदार लगा है तो मुझे जरूर बताना कि यार इस गाने में आपका फेवरेट स्टार कौन है। टेल मी ऑन इंस्टा आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ये भी बताना कि वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना

आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में हम बातें करेंगे और उसका हर एक गाना आपके लिए बजाएंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तब तक के लिए ओम शांति ओम का दीवान की दीवांगी राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और बॉलीवुड को अगर एक टाइम मशीन में बंद करो ना, तो यार धूम ताना एक ऐसा गाना होगा फ्रॉम ओम शांति ओम का हिट एल्बम, जो उसका गोल्डन बटन होगा। जी हाँ, मतलब धूम ताना एक प्योर रेट्रो सेलिब्रेशन था। श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज ने 70s के फिल्मी रोमांस को बिल्कुल फ्रेश स्पार्कल दिया था। और कंपोजर्स विशाल शेखर ने इस गाने को ना इंटेंशनली ओल्ड स्कूल ऑर्केस्ट्रेशन के साथ कंपोज किया था, मतलब वॉयलेंस यूज करके, ट्रम्पेट्स, ड्रामेटिक बिल्डअप्स, और जैसे राजेश खन्ना और जितेंद्र का दौर का जो चार्म था वो वापस आ गया हो। और मजे की बात तो ये है कि यार शाहरुख खान को और दीपिका पादुकोण को डिजिटली क्लासिक फुटेज के साथ मर्ज किया गया था, जिसमें ना उन्हें लेजेंडरी स्टार्स के एरा में सीमलेसली फिट कर दिया गया था, जैसे कि राजेश खन्ना या जितेंद्र। और फराह खान ने पर्सनली हर फ्रेम सुपरवाइज की थी ताकि नॉस्टैल्जिया ऑथेंटिक लगे। वैसे तो यार ये गाना टेक्निकली ब्रिलियंस था ही, बट उसी के साथ साथ काफी रिकग्नाइज्ड भी था, क्योंकि इस गाने को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और टेक्निकल कैटेगरीज में काफी सारे अवार्ड्स मिले थे, स्पेशली टू रिक्रिएट इट्स रेट्रो स्टाइल। तो दोस्तों, धूम ताना खुद एक कल्ट फेवरेट बन ही गया था फॉर इट्स इनोवेशन विजुअल ट्रिब्यूट। और इससे पहले कभी कोई एडिटिंग या कभी कोई गाना इस तरह से नहीं देखा गया था, और ये गाना उतना ब्यूटिफुल और 70s एंड 80s के फिल्मी रोमांस को भी वापस लेके आया, नॉट जस्ट साउंड वाइज बट फील वाइज एंड लुक वाइज। तो आप भी बताना कौन सा ऐसा दूसरा रेट्रो गाना है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये हिट एल्बम ओम शांति ओम का ये हिट गाना धूम ताना बजाते हैं आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना कि कौन सा वो ऐसा दूसरा हिट गाना है या हिट एल्बम है जो आपको भी बहुत पसंद है, उसके सारे गाने बजाएंगे यहाँ पर और कहाँ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka.
1: Mirchi, burka. हेलो
2: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
3: अरे बोल कौन रहा है
2: सर, ये वाला भेज दें बीप।
1: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
1: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दें सर, ये वाला बीप।
1: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: अरे बावले हो गए हो क्या?
2: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
1: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
1: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
1: अबे पागल ले ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
1: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट सर, ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
1: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
1: अबे ओ पागल मार, ये क्या कर रही है? मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
7: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
8: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
7: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
9: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Tera kya hoga, Kalia?

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। श्याम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज़्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
8: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.
16: Sham Shardar, let's do not donkey, have a funky time.
17: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार वाइब सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है सीधा DDLJ से। जी हाँ, वही आइकॉनिक क्लाइमैक्स सीन जहां राज सिमरन के पीछे दौड़ रहे हैं, ट्रेन चल रही है, हाथ पकड़ने का मोमेंट और बैकग्राउंड में हिस्ट्री बन चुकी है। वैसे तो यार स्क्रीन पे लगता है कि सब परफेक्टली प्लान था, पर पर्दे के पीछे सीन थोड़ा रिस्की था। जी हाँ, ये सीन किसी ग्रीन स्क्रीन पर नहीं बल्कि एक रियल चलती ट्रेन पर शूट हुआ था और SRK एक्चुअली मूविंग ट्रेन के फुटबोर्ड पर लिटरली लटके हुए थे। कोई फैंसी सेफ्टी हार्नेस नहीं था, कोई CGI नहीं, सिर्फ बैलेंस, ट्रस्ट और आदित्य चोपड़ा का कॉन्फिडेंस। एक गलती और राज स्विट्जरलैंड नहीं, सीधा प्लेटफॉर्म पर होते। वैसे क्रू का पल्स थोड़ा हाई था, लेकिन डायरेक्टर का फोकस टाइट था और कैमरा बोल रहा था कि ये शॉट मिलेगा ना तो पिक्चर हिट है बॉस। तो जी हाँ, आज भी एक टेक, एक मोमेंट और बॉलीवुड को मिल गया था वो आइकॉनिक शॉट जिसे आज तक का हमारा सबसे बड़ा रोमांटिक एंडिंग बोला जाता है। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में रोमांस सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक से नहीं बट कभी कभी थोड़े रियल रिस्क से भी बनता है। और ऐसे ही पर्दे के पीछे की फिल्मी हंगामे चाहिए तो मुझे जरूर बताना। DM me on Insta RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए DDLJ का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इधर।
1: अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे?
0: अबे भाई मैंने इससे पूछा क्रिकेट का गोल्ड कौन है,
1: इसे ये नहीं पता।
0: कौन है बता?
1: कोहली।
0: अरे तू भी आस। इधर हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और तुम दोनों को गोल्ड नहीं पता।
2: भाई, भाई, भाई।
0: तुम दोनों गग गोल्ड हो।
2: ए? वो क्या होता है?
0: गैर गुजरे ऑफ ऑल टाइम
2: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। कंग्रेचुलेशंस।
3: इट्स हॉट। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: ये मोह मोह के धागे।
6: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
7: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेक्युलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th, 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड bongobashi.sca.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।

0: the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
1: નવરાત એકજ સ્પિરિટ
2: ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર કમ્યુનિટી ને સાથી લાવી રહ્યા છે પિસ્કાટવેમાં
1: રમો ગરબા ડેલી 11-19 ઓક્ટોબર સાંજે 7 કલાક થી
2: તારીખ 18મી ના રોજ 8મ યજ્ઞ 19મી એ 9મ યજ્ઞ અને 25મી એ શરદ પૂર્ણિમા ગરબા ને મિસ ના કરતા તો ફેમિલી સાથે જોડાઓ અને અનુભવ ડિવિનિટી વિઝિટ ગાયત્રી સેન્ટર .org ટુડે
3: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट
4: शाम शानदार लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम
5: मिर्ची मंडे ग्रूव ऑलरेडी लॉक और वीक का रिदम दोस्तों सेट हो चुका है विद दिस शो शाम शानदार लाइव विद योर वन एंड ओनली मिर्ची सिद्धि. तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको टाटा बाय बाय सायोनारा कह दूं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है. हमारी रोशनी आने वाली है लव के कुछ फंडे लेकर, क्योंकि यार अगर आज के लोकल अपडेट्स म्यूजिक ओटीटी पिक्स के साथ अगर आपका मूड सेट हो चुका है तो थोड़ी यार लव लाइफ पे भी ध्यान दे दो विद रोशनी के फंडे. तो कहीं ना जाइए, बने रही हमारे साथ. Right here on Mirchi, this is Mirchi Siddhi signing off.